बना स्मूदी का टेक्सचर सही। इसे पौष्टिक बनाने डालो काला नमक। काला नमक खाकर सेहत जाएगी चमक। इसमें जब डालोगे नींबू की कुछ बूंदे, तब एंजॉय करोगी स्मूदी अपने नैनों को मूंदे। क्यूकम्बर की ये स्मूदी है हिंदुस्तानी और वेस्टर्न फ्यूजन। झटपट बनाओ इसे और दूर करो कंफ्यूजन। जी भर कर खाओ आप देसी खाना। उसके साथ सुनिए आप हमारा अगला गाना।

वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी खाद्य संस्कृति में तरह तरह के व्यंजन हैं। हमें तो बस बहाने ढूंढने हैं उनसे दोबारा मिलने के। अब आप क्यूकम्बर स्मूदी की ही बात ले लो। हमारी भारतीय खाद्य संस्कृति में थाली के लेफ्ट साइड मतलब बाई ओर नमक, चटनी, कचुम्बर और पापड़ जैसे व्यंजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में परोसे जाते हैं, जिससे हमारे भोजन का स्वाद और ज्यादा निखरता है। सीजन के मुताबिक चटनी और कचुम्बर के टाइप्स को चेंज करना हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। पर्टिकुलर सीजन में जो भी फल और सब्जियां उपलब्ध होती हैं, उस हिसाब से हमारा भोजन तैयार होना ही चाहिए। फिलहाल गर्मी वाला जो सीजन चल रहा है उसमें हमने इंटरेस्टिंग रेसिपीज बना ली है। अगर आपके पास भी ऐसी ही सीजन स्पेशल इंटरेस्टिंग रेसिपीज हैं, तो हमें जरूर लिखिए। हमारे देश की खाद्य संस्कृति को निभाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज शुरुआत में हमने बनाया मैंगो पुलाव। भिगोए हुए बासमती चावल, हापुस आम और कुछ चुनिंदा मसालों को यूज करके हमने मैंगो पुलाव इस यमी रेसिपी को एकदम शिद्दत से बनाया है कि नहीं। मैंगो सीजन को हर तरह से सेलिब्रेट करने की हमारी छोटी सी कोशिश एकदम कामयाब रही। उसके बाद हमने एक नॉन फायर रेसिपी बनाई। क्यूकम्बर स्मूदी नाम की इस मखमली रेसिपी ने गर्मी को थोड़ा कम करने की सफल कोशिश की। क्रिस्टल डेकोरेशन वाली और दही के साथ खीरा मींस ककड़ी का कॉम्बिनेशन तो गर्मी को मात देने एकदम सुपर कूल कॉम्बिनेशन साबित हुआ। अजी जनाब, बिना तले भी हम बहुत सी चटपटी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज बना ही सकते हैं। खाने को डीप फ्राई करने की बजाय थोड़ा सा तेल लगाकर हम नॉन स्टिक पैन पर अपनी रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें, फॉर एग्जाम्पल पकोड़े जो बारिश के मौसम में सिग्नेचर डिश है, उसे कैसे बनाए? तो जनाब जरा सुनिए। आप अप्पम पात्र को जानते हैं? हाँ, वही जिसमें अप्पम बनाते हैं, जिसमें इडली पात्र के जैसे कई सारे खांचे होते हैं। हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। उसके हर एक खांचे में लगभग आधा चम्मच तेल फैलाकर हम पकोड़े भी तलेंगे और बटाटा वड़ा भी तलेंगे। कब? कब मतलब झमाझम बारिश को शुरू तो होने दीजिए, मौसम को करवट तो लेने दीजिए, सुहाना सा सावन बरसने तो दीजिए। फिर हम हाले दिल को बयान भी करेंगे और साथ ही लजीज खाने का जश्न भी मनाएंगे। लेकिन उसके पहले आप कीजिए एक काम। आचार्य 90 FM इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आपकी खिदमत करने का एक मौका दीजिए। वैसे बारिश के सुहाने मौसम में वो कौन सी चीज है जिसे खाना आपको बेहद पसंद है? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आजे भारतीय सीमा। अर्ज किया है, मेरी जमीन पर कितने ही आसमान रहे, आचार्य 90 FM के ऑडियंस का हमेशा ही साथ रहे। फिर लेकर आऊंगी मैं कुछ रेसिपीज सुहानी, हर रेसिपी के साथ एक छोटी सी कहानी। मिलना है हमें हर सोमवार और शुक्रवार, जायके के सफर में दिल हुआ बेकरार, सजती है थाली और खाने में मसाले, आऊंगी मैं वापस अपना वादा निभाने। हमारी भारतीय संस्कृति में जायके का भंडार। ऑडियंस जी, जल्द ही मिलेंगे हम और लाएंगे स्वाद के जायके का दरबार। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आचार्य शब्बीर लेके आया हूँ कहानियों के गुल्लक। आज हम सुनने वाले एक ऐसी कहानी जिसमें तीन अलग अलग किरदार है, और ये कहानी है प्री इंडिपेंडेंस एरा की, यानी आज़ादी के पहले की, जिसे कि हम सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली है। हमने आज़ादी के लिए कितना बलिदान दिया है, हमारे पूर्वजों ने कितने शहीद हुए हैं, कितनों ने जेल काटी है, कितनों ने ना जाने कितनी वेदनाएं सही हैं। तो उन्हीं कहानियों में से, उन्हीं गाथाओं में से एक कहानी मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। तीन रंग, एक खून, एक आजादी की दास्तां। पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के जुल्म के नीचे दबा हुआ था। गलियों में खौफ था, खेतों में भूख थी, और जवानों के दिल में एक ही आग जल रही थी, आजादी। हर शहर में पुलिस की सीटियां गूंजती थी और हर चौक पर गोरा सिपाही खड़ा होता था। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के कंधे पर बंदूक। लेकिन उस अंधेरे के दौर में भी कुछ लोग दिया बनके जल रहे थे, और उन्हीं दियों में तीन नाम सबसे अलग चमकते थे, आनंद, अशफाक और अमित। तीन दोस्त, तीन अलग कहानियां, तीन अलग मजहब और घराने, लेकिन एक ही सपना, हिंदुस्तान आजाद होना चाहिए। और इसी सपने के लिए उन्होंने अपनी जवानी, अपनी मोहब्बत, अपना घर और आखिर में अपनी जान तक त्याग दी। ये कहानी है दोस्तों की, मोहब्बत की, बलिदान की, और उस मिट्टी की जिसके लिए लोग हंसते हंसते शहीद हो गए। बनारस की सुबह हमेशा से अलग होती थी। गंगा घाट पे मंदिरों की घंटियां बजती थी, कहीं अजान की आवाज थी, कहीं से वंदे मातरम धीरे धीरे हवा में ठहरता था।

1942 का साल था। सुबह के 5 बजे आनंद घाट की सीढ़ियों पर बैठा था। हाथ में एक पुरानी डायरी थी और आंखों में सपने। सफेद कुर्ता, पतला सा शरीर और चेहरे पर अजीब सा सुकून। तभी पीछे से आवाज आई, अरे कवि बाबू, देश आजाद करोगे या घाट पे शायरिया ही लिखते रहोगे? आनंद मुस्कुरा दिया, अशफाक तू सुबह सुबह बकवास की फैक्ट्री खोल देता है। अशफाक हंस पड़ा। अशफाक अली, तेज आंखें, गहरी आवाज, मजबूत कांधे और दिल बच्चे जैसा। उसके कांधे पर एक झोला था जिसमें कुछ कागज और छुपा हुआ क्रांतिकारी पैम्पलेट था। दोनों बात ही कर रहे थे कि पीछे से एक आवाज और आई, तुम दोनों फिर लेट हो। यह अमित था, लंबा कद, माता हमेशा टेंशन से भरा हुआ क्योंकि घर की जिम्मेदारियां उसके कांधों पर जो थी। अमित के पिता बीमार ही रहते थे, घर में माँ और 2 छोटे भाई थे, इसलिए अमित बचपन से ही वक्त से पहले बड़ा हो गया था। अशफाक ने उसका कांधा पकड़ा, अरे नेताजी, आज का प्लान बताओ। अमित ने धीरे से कहा, कल रात पुलिस ने 2 लड़कों को पकड़ लिया है। अंग्रेजों को शक है कि यहाँ क्रांतिकारी पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं। आनंद का चेहरा सीरियस हो गया। नाम रघु और करीम, तीनों चुप हो गए क्योंकि बनारस में अब सिर्फ दोस्ती या मोहब्बत नहीं चल रही थी, अब हर दिन मौत पास खड़ी रहती थी। हेमा, उसका नाम सुनते ही आनंद की सांसें बढ़ जाती थी। हेमा बनारस की एक स्कूल मास्टर की बेटी थी, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार। उसकी आंखों में अजीब सी हिम्मत थी। वो लड़कियों को पढ़ाती थी और चुपचाप क्रांतिकारियों के लिए संदेश भी पहुंचाती थी। आनंद पहली बार उसे लाइब्रेरी में मिला था। वो हरिश्चंद्र की किताब ढूंढ रही थी। आनंद ने किताब बढ़ाते हुए कहा था, ये लो। हेमा ने किताब ली और पूछा, आपने पढ़ी है? आनंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 3 बार। हेमा ने पूछा, अच्छी लगी? किताब से ज्यादा उससे पढ़ने वाली अच्छी लगती है, आनंद ने जवाब दिया। और उस दिन हेमा पहली बार शर्माई थी और तब से आनंद हर रोज लाइब्रेरी में जाने लगा। एक शाम हेमा घाट पर आनंद से मिली, हमें मिलना कम कर देना चाहिए, हेमा ने कहा। आनंद का दिल धक से रह गया। क्यों? पुलिस नजर रख रही है, डर लगता है। हेमा ने उसकी आंखों में देखा, अपने लिए नहीं डर लगता, पर तुम्हारे लिए जरूर लगता है, आनंद धीरे से बोला। अगर आजादी के रास्ते में मोहब्बत आ गई तो? हेमा मुस्कुराई, तो मोहब्बत भी कुर्बान कर देंगे और क्या। उस रात आनंद ने डायरी में लिखा, कुछ लोग जिंदगी में प्यार बन के आते हैं और कुछ लोग वतन बन जाते हैं। अशफाक जब 9 साल का था तब उसके अब्बा की मौत हो चुकी थी। तब से उसकी दुनिया सिर्फ उसकी अम्मी थी। उसकी अम्मी सिलाई करती थी, दिन भर कपड़े सिलती, तब जाके घर चलता। अशफाक रात को अक्सर उठकर देखता उसकी अम्मी धीमी रोशनी में आंखों पर कपड़ा रखकर सुई में धागा डाल रही होती। एक दिन अशफाक ने कहा, अम्मी मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। उसकी अम्मी गुस्से में बोली, एक थप्पड़ दूंगी, तुम पढ़ोगे, बहुत पढ़ोगे, लेकिन पैसे? अशफाक ने कहा, तुम्हारे अब्बा का सपना था मेरा बेटा अफसर बने, अशफाक की अम्मी ने जवाब दिया। अशफाक चुप हो गया, लेकिन वक्त बदलता गया और अफसर बनने का सपना क्रांतिकारी बनने में बदल गया। एक रात अशफाक देर से घर आया, कपड़ों पर खून था। उसकी अम्मी घबरा गई, या अल्लाह क्या हुआ? अशफाक ने झूठ बोला, कुछ नहीं अम्मी, गिर गया था, लेकिन माँ सब समझ जाती है। उसने धीरे से पूछा, अंग्रेजों से लड़ रहे हो ना? अशफाक चुप रहा। उसकी अम्मी की आंखें भर गई। एक बार तुम्हारे अब्बा को खोया है अशफाक, तुम्हें नहीं खोना चाहते। अशफाक ने माँ का हाथ पकड़ा, अम्मी अगर हम नहीं लड़ेंगे तो ये जुल्म कब खत्म होगा, हम कैसे चैन से जी पाएंगे।
हम कैसे खुले आसमान में सांसें ले पाएंगे, हम कैसे अपनी जरूरतों का सामान आसानी से ले पाएंगे, हम कैसे आसानी से घूम सकेंगे, कहीं आ जा सकेंगे। अशफाक जब ये कह रहा था तो उसकी अम्मी रो पड़ी और रोते रोते कहा, तुम बिल्कुल अपने अब्बा जैसे हो। अमित की दुनिया अलग थी, उसके घर में हर वक्त परेशानी रहती थी। माँ राशन का हिसाब करती, छोटे भाई फीस के लिए रोते, पिता खांसी में खून थूकते। एक दिन माँ ने कहा, बेटा कोई नौकरी देख ले। अमित चुप रहा। उसके पास एक तरफ घर था और दूसरी तरफ देश। उस रात आनंद ने पूछा, तू टेंशन में लग रहा है। अमित ने बस एक बात कही, हर आदमी को आजादी चाहिए, लेकिन घर वाले रोटी भी मांगते हैं। अशफाक ने उसका कांधा पकड़ा, तू अकेला नहीं है अमित। अमित की आंखें भर गई, क्योंकि दोस्ती कभी कभी घर से भी ज्यादा सहारा बन जाती है।

सो स्वागत है दोस्तों आपका ब्रेक के बाद। हम सुन रहे थे तीन दोस्तों की कहानी, अमित, आनंद और अशफाक। कैसे तीनों के घर पे अलग अलग जिम्मेदारियां थी। आनंद अपनी मोहब्बत में गुम था, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल में, उसके जहन में, उसके दिमाग में देश चल रहा था। वही दूसरी ओर अशफाक है जिसके फादर नहीं है, और उसके लिए अगर सब कुछ जो है तो वो उसकी माँ है। तीसरी तरफ अमित है जिसके घर पे उसके पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, भाइयों के लिए स्कूल देखना है और घर में ज़रूरतों का सामान भी ज़्यादा तरीके से नहीं होता। तो तीन दोस्त तीन अलग अलग कहानियाँ जी रहे थे, तीन अलग अलग जिंदगी जी रहे थे, पर इन तीन दोस्तों में एक चीज़ कॉमन थी, वो एक सपना, वो एक आज़ादी का सपना। तो चलिए सुनते हैं आज़ादी के लिए अब इन तीन दोस्तों ने क्या किया। अगस्त 1942, महात्मा गांधी ने आवाज उठाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूरा देश जल उठा। रेलवे स्टेशन पर नारे लगने लगे, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। बनारस भी उबल रहा था। तीनों दोस्त अब खुले आंदोलन में शामिल हो गए, पैम्फलेट बांटने लगे, ग्रुप मीटिंग्स करने लगे। पुलिस की मूवमेंट देखना हर दिन खतरा बढ़ रहा था। एक रात अमित ने कहा, कल ट्रेजरी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट है। अशफाक हंस पड़ा, मतलब कल लाठी भी पड़ेगी। आनंद बोला, पड़ेगी तो साथ में पड़ेगी। तीनों हंस दिए, उन्हें क्या पता था ये हंसी धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही है। अगले दिन बनारस की सड़कें भर चुकी थी, हजारों लोग, महिलाएं, बच्चे, स्टूडेंट्स, सबके हाथ में तिरंगा। आनंद जोर जोर से चिल्ला रहा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तभी गोरा ऑफिसर आया और उनपे चिल्लाया, लेकिन भीड़ नहीं हटी। और अगले ही पल लाठी चार्ज, चीखें गूंज उठी, लोग चिल्लाने लगे, लोग भागने लगे। एक सिपाही ने एक बूढ़े आदमी को मारा, अशफाक का खून खोल उठा, उसने सिपाही को धक्का दे दिया। अमित ने आनंद को खींचकर साइड किया, लेकिन तभी एक लाठी आनंद के सिर पर लगी, खून बहने लगा। हेमा दूर से सब देख रही थी, वो भागकर आनंद तक पहुंची। आनंद बेहोश हो चुका था। उस रात हेमा ने आनंद के सर पर पट्टी बांधते हुए पूछा, तुम पागल हो? आनंद धीरे से हंस पड़ा, हां, मर जाते तो? हेमा ने सवाल किया। आनंद ने उसका हाथ पकड़ा, तो याद रखना, किसी ने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी। और ये सुनते ही हेमा रो पड़ी। हर आंदोलन में एक गद्दार होता था, बनारस में भी था। किसी ने पुलिस को क्रांतिकारियों के नाम बता दिए, एक एक करके लोग उठाए जाने लगे। एक रात अमित भागते हुए आया, पुलिस को हमारे अड्डे का पता चल गया है, तीनों तुरंत वहां से निकलो। लेकिन तभी गोलियों की आवाज गूंजी, पुलिस पहुंच चुकी थी, सब भागने लगे। अशफाक पीछे रह गया, एक सिपाही ने उस पर बंदूक तानी। तभी आनंद उसके सामने आ गया, भागो अशफाक, गोली चली। आनंद बच गया, लेकिन उसके कंधे को छू गई गोली। तीनों मुश्किल से बच निकले। उस रात पहली बार तीनों को महसूस हुआ, मौत अब बहुत पास आ चुकी है। हेमा के पिता को आनंद और उसके क्रांतिकारी होने का पता चल गया था। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। हेमा ने पूछा, क्यों? क्योंकि वो जिंदा नहीं बचेगा हेमा। लेकिन हेमा ने उस वक्त जवाब दिया, जो देश के लिए जीता है उससे प्यार करना गुनाह नहीं है पिताजी। उसके पिता ने हेमा को थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन हेमा चुप नहीं रही। वो उस रात आनंद से दोबारा मिली और उसने कहा, आनंद, शायद घर वाले मेरी शादी कहीं और कर दें। आनंद कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं लौटकर ना आया तो?
हेमा की सांसें रुक गई। ऐसी बात मत करो आनंद, आनंद ने धीरे से कहा। क्रांति में लोग कहानियां नहीं लाशें बनकर लौटते हैं। हेमा ने उसकी होठों पर उंगली रख दी। तुम लौटोगे, लेकिन दोनों जानते थे शायद ये झूठ है। एक रेड में अमित पकड़ा गया, पुलिस उसके घसीटकर जेल ले गई। उसके घर में मातम सा छा गया। मां पुलिस स्टेशन के बाहर रोती रही, मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निर्दोष है। लेकिन अंग्रेजों को इंसानियत से मतलब नहीं था। जेल में अमित को पीटा गया, नाम बताओ, किसके कहने पर काम करते हो। लेकिन अमित चुप रहा। एक गोरा ऑफिसर ने उसके मुंह पर पानी फेंका, तुम लोग कभी नहीं जीतोगे। अमित खून तुकते हुए हंस पड़ा, फिर इतना डरते क्यों हो हमसे। ऑफिसर ने उसे और मारा। बाहर आनंद और अशफाक अमित को छुड़ाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन अमित ने जेल के अंदर ही फैसला कर लिया था, वो टूटेगा नहीं चाहे जान क्यों ना चली जाए। बनारस में क्रांतिकारी एक्टिविटीज अब और ज्यादा तेज हो गई थी। आनंद अंडरग्राउंड काम कर रहा था और अशफाक बॉम्ब बनाने वाले ग्रुप के कॉन्टेक्ट में आ गया था। अमित जेल से छूटकर और ज्यादा खतरनाक बन चुका था। अब तीनों दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, वो अंग्रेजों के लिए नाइटमेयर बन चुके थे। एक दिन अशफाक ने हंसकर कहा, अगर हम बच गए ना तो आजादी के बाद साथ में दुकान खोलेंगे। अमित हंसा, तू हिसाब रखेगा? नहीं, मैं ग्राहकों से लड़ूंगा। तीनों जोर से हंस पड़े, लेकिन हंसी के पीछे सच छुपा था। उनमें से किसी को यकीन नहीं था कि वो जिंदा बचेंगे, पर वो हमेशा जिंदा दिल रहना जानते थे, हमेशा हंसना जानते थे, हमेशा अपने देश के लिए जान देने के लिए खड़े रहते थे। उन तीनों के दिल में, उन तीनों के जहन में महज एक ही सपना था, एक ही मिशन था, और वो था आजादी।

ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों आचार्य 90 FM में। आप सुन रहे थे कहानियों की गुल्लक और इसमें कहानी चल रही थी हमारी तीन दोस्तों की। जैसे कि पहले हिस्से में आपने सुना कि कैसे तीन दोस्त तीन अलग कहानियां तीन अलग जिंदगियां जी रहे थे, लेकिन तीनों का मकसद एक ही था, आज़ादी। और अब धीरे धीरे वो आज़ादी इस तरह बढ़ चुकी थी कि आनंद, अमित और अशफाक को सिवाय आज़ादी के दूसरा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और वो तीनों अपने अपने तरीके से प्लान बनाने लगे थे, प्लान जिससे देश को आज़ादी मिल सके, युवाओं के दिल में आज़ादी के लिए जोश जग उठे। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी किस मोड़ पर जाएगी। बनारस में ब्रिटिश ट्रेन आने वाली थी। क्रांतिकारियों ने प्लान बनाया, ट्रेन को उड़ाना है। ये मिशन बहुत डेंजरस था और इस मिशन के लिए तीन नाम चुने गए थे, आनंद, अशफाक और अमित। रात को तीनों घाट पर मिले। चांद आधा था, हवा में अजीब सा सन्नाटा था। आनंद ने धीरे से पूछा, डर लग रहा है? अशफाक बोला, मरने से नहीं। अमित ने पूछा, तो? अशफाक ने आसमान देखा, बस अम्मी अकेली रह जाएगी। सब चुप हो गए। फिर आनंद बोला, हिमा। अमित ने उसका कांधा दबाया और फिर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ही बात थी, अगर हम गिरे तो हिंदुस्तान उठना चाहिए। रात के 2 बजे ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही थी। तीनों ने एक्सप्लोसिव लगा दिए, लेकिन किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, गोलियां चलने लगी, भागो, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अशफाक ने ट्रिगर एक्टिवेट किया, एक्सप्लोशन हुआ, ट्रेन के डब्बे हवा में उड़ गए। ब्रिटिश एम्यूनिशन जल उठा, लेकिन उसी वक्त एक गोली अशफाक के सीने में लगी। अशफाक! आनंद उसकी तरफ भागा। अशफाक जमीन पर गिर चुका था। उसने मुश्किल से कहा, अम्मी से कहना बेटा डरा नहीं। उसकी सांसें रुक गई। आनंद चीख पड़ा। तभी अमित को भी गोली लगी। वो घुटनों पर गिर गया। आनंद भाग! आनंद कह रहा था नहीं। अमित हंसा, देश पहले, आनंद आनंद भाग! और उसका सर एक तरफ झुक गया। आनंद की आंखों के सामने दोनों दोस्त मर चुके थे। पुलिस पास आ रही थी। आनंद ने तिरंगा उठाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गोलियों की बारिश हुई और आनंद भी मिट्टी पर गिर गया। उसके हाथ में तिरंगा था, आंखों में हेमा थी और होठों पर आजादी। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो गया। हर गली में जश्न था, तिरंगा लहरा रहा था। लेकिन बनारस के एक कोने में तीन माएं रो रही थी। अशफाक की अम्मी ने उसकी तस्वीर छाती से लगा कर रखी थी।
अमित के छोटे भाई फौज में भर्ती हो गए थे और हेमा हेमा ने तो कभी शादी ही नहीं की। वो हर साल 15 अगस्त को घाट पर जाती, 3 दिए जलाती और धीरे से कहती, तुम तीनों जीत गए। हवा धीरे से चलती जैसे कहीं दूर से 3 आवाजें आ रही हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो दोस्तों इसी के साथ होता है इस कहानी का अंत। हम सुन रहे थे 3 रंग 1 खून 1 आजादी की दास्तां, जिसमें हमने सुना, हमने जाना कि कैसे 3 दोस्तों के लिए सिर्फ आजादी ही सब कुछ था, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि आजादी के लिए जो उस समय लोग थे वो बहुत पागल थे, जो अपनी जान देने के लिए, जो अपने वतन पे मर मिटने के लिए तैयार रहता है वो एक पागल ही होता है। वतन से प्यार करने वाले की प्यार की सीमा, प्यार की हद इस कदर सारी हदें पार कर देती है कि फिर उस व्यक्ति के लिए कोई हद नहीं रहती। और इसी हद को पार कर चुके थे 3 दोस्त, अमन, अशफाक और अमित। और तीनों ने बिना हिचकिचाए, बिना कोई संकोच किए, बिना किसी डर के हंसकर शहीद हो गए, हंसकर मौत को स्वीकारा। ना ब्रिटिशों के आगे झुके, ना उनकी गोलियों के आगे झुके, जमीन पर गिर गए, छातियों पर गोलियां खाते रहे, पर दिल में एक ही सपना जिंदा रखे, आजादी। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों हम सुन रहे थे ये कहानी है, एंड आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्री इंडिपेंडेंस एरा में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो न जाने किसी शहर में, किसी गली में, किसी गांव में, हर एक जगह से न जाने सैकड़ों हजारों कहानियां उस समय बनी होगी। कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे पहलू हमेशा लाते रहे और आपके दिल को छूते रहे। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर विदा लेता हूँ आपसे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: कृष्णकांत जी, बहू नहीं बेटी लेकर जा रहा।
1: हरिश्चंद्र जी, जिस दिन सारे बेटों के बाप आप जैसे हो जाएंगे, उस दिन बेटियां किसी बाप के लिए बोझ नहीं कहलाएंगी।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज की कहानी काफी स्पेशल है। मैंने अब तक आपको बहुत सारी कहानियां सुनाई, कुछ प्यार पे थी, कुछ लाइक सोशल मैसेजेस या बहुत अलग अलग तरह की कहानी, पहली ट्रेन जर्नी, पहली प्लेन जर्नी वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आज की जो कहानी है वो काफी स्पेशल है। एक ऐसी कहानी जो शायद हम देखते रोज है पर कभी उसके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, और जो कुछ लोग करते हैं उनको शायद हम कभी हेल्प भी नहीं कर पाते। तो आज की कहानी है एनिमल रेस्क्यू की। मुंबई की एक बिजी सी सड़क, सुबह के करीब 8 बज रहे थे। रोड पर कार्स, बसेस, बाइक्स और ऑटो रिक्शास की लाइन लगी हुई थी। हर कोई अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जल्दी में था। किसी को ऑफिस पहुंचना था, किसी को स्कूल जाना था, किसी को अपनी शॉप खोलनी थी और किसी को ट्रैफिक से निकलना था। लेकिन उस भीड़ भाड़ के पीछे एक छोटा सा पपी सड़क के कोने पर पड़ा हुआ था। उसकी एक टांग इंजर्ड थी, बॉडी पर चोट के निशान थे और आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या कोई मेरी हेल्प करेगा, क्या कोई मेरी मदद करेगा। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, किसी ने देखा, किसी ने सिंपति दिखाई, किसी ने कहा बेचारा, लेकिन कोई रुका नहीं। तभी एक लड़का बाइक से आ रहा था। उसका नाम था आरव। आरव की एज 27 साल की थी। वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था, ऑफिस जाता था, घर संभालता था और अपनी जिंदगी में बिजी रहता था। एनिमल से उसे प्यार था, लेकिन वो कभी एनिमल रेस्क्यू करने वाला नहीं था। उसने बाइक स्लो की, पपी को देखा, फिर बाइक आगे बढ़ा दी, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उसने ब्रेक दबाया, बाइक साइड में खड़ी की, हेलमेट उतारा और पीछे मुड़कर पपी को देखा। पपी अब भी वहीं था। आरव धीरे से उसके पास गया। ओह, क्या हुआ तुझे? पपी ने हल्की सी आवाज निकाली। आरव का दिल भर आया। उसने आसपास देखा, यार कोई इसको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा रहा। उतने में एक चाय वाला बोला, भैया सुबह से पड़ा हुआ है, शायद गाड़ी ने हिट किया है। आरव ने पूछा, किसी ने एनिमल रेस्क्यू को कॉल किया? चाय वाला हंस पड़ा, कौन करेगा भाई, सबको अपना काम है। ये लाइन आरव के दिमाग में अटक गई, सबको अपना काम है। उसने पप्पी को केयरफुली उठाया। पप्पी दर्द से करा रहा था, बस बस बस डर मत, डर मत, मैं हूं। आरव ने उस पपी को सहलाते हुए कहा। आरव अब उसे अपने बाइक पर लेके गया एक नियरेस्ट एनिमल हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने पपी को चेक किया। पपी का लेग फ्रैक्चर है, बॉडी में इन्फेक्शन भी है। आरव ने पूछा, डॉक्टर ये बस तो जाएगा ना? डॉक्टर ने कहा, चांस है लेकिन ट्रीटमेंट में टाइम लगेगा। आरव ने बिना सोचे कहा, ट्रीटमेंट कीजिए। डॉक्टर ने पूछा, ओनर कौन है? आरव कुछ सेकेंड्स के लिए शांत रहा, फिर मुस्कुराया, ओनर तो नहीं पता लेकिन अभी के लिए मैं ही इसका ओनर हूं। पपी का नाम आरव ने रखा मोटू, क्योंकि वो छोटा सा था लेकिन उसका पेट बहुत बड़ा था पपी का। मोटू का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। आरव रोज ऑफिस से पहले क्लिनिक जाता था, उसे खाना देता था, उसके हेड पर हाथ फेर कर कहता, तू ठीक हो जा, फिर हम दोनों वॉक पे जाएंगे। कुछ दिन बाद मोटू की कंडीशन इंप्रूव होने लगी थी, लेकिन आरव के लिए कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन जब वो क्लिनिक से बाहर निकला, उसने देखा कि एक इंजर्ड कैट रोड के पास पड़ी थी। आरव फिर रुक गया, उसने उसे रेस्क्यू किया। फिर एक बर्ड, फिर एक इंजर्ड काऊ,
फिर एक अबॉन्डेड किटन। हर रेस्क्यू के साथ उसे एक बात समझ में आने लगी थी, प्रॉब्लम एनिमल्स की नहीं थी, प्रॉब्लम अवेयरनेस और रिस्पॉन्स सिस्टम की कमी की थी। आरव ने सोशल मीडिया पर एक स्मॉल पेज बनाया और उस पेज का नाम था एक जान। उसने फर्स्ट पोस्ट अपलोड की, अगर आप रोड पर इंजर्ड एनिमल देखे इग्नोर मत कीजिए, अगर आप खुद रेस्क्यू नहीं कर सकते तो कम से कम किसी रेस्क्यूअर या वेटरनिटी क्लिनिक को इन्फॉर्म कीजिए। इनिशियली उस पोस्ट को देखकर पढ़कर सिर्फ 17 फॉलोअर्स आए, अगले दिन वो फॉलोअर्स बढ़कर 50 हो गए और फिर अगले दिन बढ़कर वो 200 हो गए। एक दिन आरव का एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में आरव एक इंजर्ड डॉग को रेस्क्यू कर रहा था। कैप्शन था, आपके लिए वो सिर्फ एक स्ट्रीट डॉग हो सकता है, उसके लिए आप ही उसकी लास्ट होप हो सकते हैं। वीडियो को थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने शेयर किया और आरव को अब मैसेजेस आने लगे, सर मेरे एरिया में भी इंजर्ड डॉग है, सर एक कैट ड्रेन में फंस गई है, सर एक बर्ड की विंग इंजर्ड है, सर कोई स्नेक सोसाइटी के कंपाउंड में आ गया है। आरव अकेले सबके पास नहीं जा सकता था। तब उसने सोचा, मुझे सिर्फ एनिमल्स रेस्क्यू नहीं करने, मुझे एनिमल को रेस्क्यू करने वाले लोग बनाने हैं। फिर क्या, आरव ने की एक शुरुआत। आरव ने संडे को एक स्मॉल मीटिंग रखी, उसमें सिर्फ 6 लोग आए, एक कॉलेज स्टूडेंट रिया, एक डिलीवरी बॉय समीर, एक रिटायर्ड टीचर जोशी सर, एक वेटरनरी स्टूडेंट मेहुल और एक शॉपकीपर इमरान, और छठा आदमी था आरव। आरव ने सबको देखा, हम कोई एनजीओ नहीं है, रिया ने पूछा तो फिर, आरव ने बोला हम एक नेटवर्क है, एनिमल रेस्क्यू नेटवर्क। प्लान सिंपल था, अगर किसी एरिया में एनिमल इंजर्ड मिले, लोकेशन शेयर होगी, फोटो वीडियो भेजा जाएगा, नियरेस्ट वॉलंटियर को अलर्ट किया जाएगा, एनिमल को सेफ लोकेशन पर शिफ्ट किया जाएगा, वेटरनरी ट्रीटमेंट अरेंज होगा, रिकवरी के बाद एडॉप्शन या रिहैबिलिटेशन की प्लानिंग होगी। सबने अग्री किया और नाम रखा एक जान रेस्क्यू नेटवर्क। शुरुआत में प्रॉब्लम्स बहुत आई, कभी एम्बुलेंस नहीं मिलती थी, कभी वेट अवेलेबल नहीं होता था, कभी लोग वॉलंटियर को रोक देते थे, कभी सोसाइटी के लोग कहते अरे ये तो स्ट्रीट डॉग है यहां से ले जाओ, कभी पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता था, कभी रात के 2 बजे रेस्क्यू करना पड़ता था, लेकिन टीम रुकी नहीं थी। दोस्तों एक कहानी जो एक इंजर्ड पपी मोटू से शुरू हुई, उसने कहीं ना कहीं आरव के दिल में एक ऐसी जगह बना ली थी एनिमल्स के लिए जिसे आरव शायद भुला नहीं पा रहा था, और उसी को दिमाग में रखते हुए आरव ने एक नई टीम शुरू की।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्द स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। किसी भी चीज को बड़ा बनने के लिए उस चीज में कुछ एकदम ऐसा बड़ा होना पड़ता है ताकि वो चीजें सब तक पहुंच जाए, और वही मोमेंट अब आने वाला था आरव की जिंदगी में। एक रात 1:30 बजे आरव का फोन बजा। हेलो, दूसरी तरफ से एक लड़की रो रही थी, सर प्लीज हेल्प, सर सर प्लीज हेल्प। आरव ने बोला, क्या हुआ? मेरे बिल्डिंग के सामने एक डॉग है, उसको किसी ने बहुत बुरी तरह से हिट किया है। आरव ने कहा, काम डाउन, लोकेशन बताओ अपनी। टीम के पास पहुंचने के लिए सिर्फ 20 मिनट थे। आरव, समीर और मेहुल तुरंत निकले। जब वो लोकेशन पर पहुंचे, डॉग रोड के मिडल में पड़ा था, उसके आस पास पूरा खून ही खून।

पूरा ब्लैक था। ट्रैफिक उसके पास से निकल रहा था। मेहुल ने चेक किया, ब्रीदिंग वीक है आरव। आरव ने कहा इसको हॉस्पिटल ले जाना होगा। लेकिन प्रॉब्लम थी, नियर बाय क्लिनिक सारे बंद थे। 24 आवर वेटनरी हॉस्पिटल 18 किलोमीटर दूर था। ट्रैफिक भी हेवी था। समीर ने कहा मैं गाड़ी अरेंज करता हूँ। एक ऑटो ड्राइवर ने मना कर दिया, डॉग को ऑटो में नहीं ले जा सकता। दूसरे ने भी मना कर दिया। तीसरे ने कहा हॉस्पिटल काफ़ी दूर है। तब एक कैब ड्राइवर वहां रुका, उसने पूछा क्या हुआ भैया। आरव ने कहा ये डॉग इंजर्ड हो गया है, इसे हॉस्पिटल ले जाना है। ड्राइवर ने कुछ सेकंड्स के लिए उस डॉग को देखा, फिर बोला बैठाओ भैया हम ले जाएंगे। आरव हैरान हो गया, आपको प्रॉब्लम नहीं है। ड्राइवर बोला प्रॉब्लम तो है भाई, लेकिन जान बचाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब जान बचाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। डॉग को कैब में रखा गया और वो हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़े। 20 मिनट बाद इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू हुआ। डॉक्टर ने कहा केस इज वेरी क्रिटिकल। आरव बाहर खड़ा था, उसके हाथ पर उस डॉग का खून लगा हुआ था। रिया का फोन आया, सर हाँ डॉग। आरव ने कहा अभी फाइट कर रहा है। रिया ने पूछा बचेगा। आरव ने हॉस्पिटल के ग्लास डोर की तरफ देखा, पता नहीं यार बचेगा या नहीं। फिर उसने धीरे से कहा लेकिन जब तक वो फाइट कर रहा है हम भी फाइट करेंगे। लगातार 1.5-2 घंटे के बाद इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद फाइनली डॉक्टर ने बाहर आकर कहा डॉग बच गया। और फिर उस डॉग का नाम रखा गया शेरू। शेरू को रिकवर होने में 2 महीने लगे। उसके बाद एक फैमिली ने उसे एडॉप्ट कर लिया। लेकिन शेरू की स्टोरी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तब हुआ जब उस कैब ड्राइवर ने आरव को फोन किया और कहा सर एक बात बोलूं। हाँ बोलो। उस रात मैं सोच रहा था कि मैं क्यों रुकूं। आरव चुप था। फिर ड्राइवर ने बोला मैं इसलिए रुका क्योंकि मुझे लगा अगर वो मेरी जगह होता तो क्या मुझे कोई भी ऐसे सड़क पर छोड़कर जाता। आरव की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि एनिमल रेस्क्यू का मतलब सिर्फ एनिमल्स को बचाना नहीं था, एनिमल्स को रेस्क्यू इंसानों के अंदर ह्यूमैनिटी को भी जिंदा कर रहा। उनका असली मकसद था कि सिर्फ जानवरों को बचाना नहीं है पर जानवरों के प्रति इंसानों में सहानुभूति भी आनी चाहिए। कुछ महीने बाद एक जान रेस्क्यू नेटवर्क में 500 वॉलंटियर्स हो गए और फिर वो 1 महीने बाद हो गए 1,000 और फिर हो गए वो 3,000। स्कूल स्टूडेंट्स अवेयरनेस ड्राइव करने लगे, कॉलेज में एनिमल फर्स्ट एड वर्कशॉप्स होने लगी, हाउसिंग सोसाइटीज ने फीडिंग जोन्स बनाए, लोकल शॉप्स ने वाटर बॉल्स रखना शुरू किया, कुछ ऑटो ड्राइवर्स ने इंजर्ड एनिमल्स के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑफर कर दिया, वॉलेंट्री डॉक्टर्स ने इमरजेंसी केसेस के लिए डिस्काउंटेड ट्रीटमेंट स्टार्ट की और सबसे इंपॉर्टेंट लोग एनिमल्स को प्रॉब्लम के रूप में नहीं लिविंग बींग्स के रूप में देखने लगे थे। एक दिन आरव को एक स्कूल से इन्विटेशन मिला, सर हम चाहते हैं आप स्टूडेंट से एनिमल रेस्क्यू के बारे में बात करें। आरव स्टेज पर गया, उसने बच्चों से पूछा यहां बैठे कितने लोग हैं जो एनिमल से डरते हैं, कुछ हाथ उठे, और कितने लोग हैं जो एनिमल्स को पसंद करते हैं। ऑलमोस्ट सारे हाथ उठे। आरव मुस्कुराया, जब एनिमल से प्यार करना अच्छी बात है तो एनिमल को बचाना अच्छी बात नहीं है क्या। लेकिन
एनिमल से प्यार करना ही इनफ नहीं है, एक चाइल्ड ने पूछा, तो क्या करना चाहिए सर? आरव ने कहा, हमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, एनिमल को अननेसेसरी डिस्टर्ब मत करो, इंजर्ड एनिमल मिले तो सेफ डिस्टेंस मेंटेन करो, ट्रेन रेस्क्यूअर या वेट को कांटेक्ट करो, रोड पर एनिमल्स को हिट करने के बाद भाग मत जाओ, वाटर और शेड अवेलेबल हो तो प्रोवाइड करो, एडॉप्ट करो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर करो, पेट को ऐसे ही छोड़ मत दो। बच्चा बोला, सर अगर हम एक एनिमल को बचाएंगे तो क्या दुनिया बदल जाएगी? आरव ने कुछ सेकंड्स के लिए पॉज लिया, फिर बोला, शायद पूरी दुनिया तो नहीं, लेकिन उस एक एनिमल की जिंदगी जरूर बदल जाएगी। एक साल बाद फिर बारिश का मौसम आया, मॉनसून। मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश होने लगी थी, बहुत ज्यादा हैवी रेन, रोड्स पूरे वाटर लॉग्ड हो गए थे, नदी के पास के एरिया फ्लडेड होने लगे थे। आरव के रेस्क्यू नेटवर्क को मैसेज मिला, 3 पपीज ड्रेनेज कैनल में फंस गए हैं, लोकेशन डेंजरस थी, वाटर लेवल कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था। आरव की टीम को मैसेज मिला, आरव ने टीम को अलर्ट किया, सब सेफ्टी गियर के साथ आओ। टीम लोकेशन पर पहुंची, पपीज की आवाज आ रही थी, लेकिन वो दिख नहीं रहे थे। मेहुल ने कहा, वाटर लेवल और बढ़ रहा है। आरव ने रोप बांधी, मैं नीचे जाता हूं। समीर ने तुरंत कहा, नहीं भाई नहीं, मैं जाता हूं। आरव बोला, रिस्क है। समीर हंस पड़ा, रेस्क्यू नेटवर्क में रिस्क नहीं होगा तो नाम चेंज करना पड़ेगा भाई। सब हंस दिए, लेकिन सिचुएशन सीरियस थी। समीर केयरफुली नीचे गया, पहला पपी निकाला, फिर दूसरा पपी निकाला, लेकिन तीसरा पपी मिल नहीं रहा था। समीर कुछ दिखा? आरव ने टॉर्च ली, सडनली एक छोटी सी आवाज आई, यहां यहां यहां, पपी एक पाइप के अंदर फंसा पड़ा हुआ है और पानी उसके अराउंड रैपिडली फ्लो कर रहा है। समीर ने हाथ अंदर डाला, पपी डर के मारे पीछे चला गया। आरव बोला, स्लोली स्लोली, उसको फोर्स मत करो। समीर ने अपना हैंड आगे किया, कम ऑन बड़ी, कम ऑन, बाहर आ जा, कम ऑन। पपी धीरे धीरे धीरे धीरे उसके हाथ के पास आया। समीर ने उसे पकड़ा और बाहर खींच लिया। जैसे ही पपी बाहर आया, टीम ने चेयर किया, तीनों पपी सेफ थे। लेकिन उस रात एक और चीज रेस्क्यू हुई और वो थी नेबरहुड की। तो दोस्तों, 6 लोगों की टीम अब बढ़कर 3,000 लोगों की टीम हो चुकी थी, और जहाँ जहाँ एनिमल को रेस्क्यू करने की कोई भी नोटिफिकेशन आता तो टीम हमेशा अवेलेबल होती, और उसी टीम ने आज 3 पपीज को भी रेस्क्यू किया। लेकिन सबसे बड़ा चेंज जो था वो था समाज में एनिमल्स के प्रति, जानवरों के प्रति जागरूकता निर्माण करना। वो जागरूकता कैसे आएगी, सुनते एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे 26 स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। अब वो तीन पपीज तो बच गए, बहुत बड़ा वाटर लॉगिंग था, लेवल्स भी बहुत ज़्यादा था पानी का, लेकिन फिर भी आरव और उसकी टीम ने उन तीन पपीज को बचा लिया। उसके बाद अगले ही दिन वही एरिया के रेसिडेंट ने मीटिंग बुलाई। एक अंकल बोले, हमारे एरिया में बहुत स्ट्रेरी एनिमल्स हैं। एक लेडी बोली, हम उनके लिए शेल्टर कॉर्नर बना सकते हैं। एक शॉपकीपर बोला, मैं डेली पानी रखूंगा। एक टीनेजर बोला, मैं फीडिंग शेड्यूल बनाऊंगा। और एक एल्डरली वुमन बोली, मैं अपने टेरेस पर इंजर्ड बर्ड्स के लिए स्मॉल रिकवरी स्पेस बना सकती हूँ। आरव बस सबको देखता रहा, उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जिस चेंज का सपना उसने एक साल पहले देखा था, अब वो धीरे धीरे रियलिटी बन रहा था। एक दिन आरव अपने रेस्क्यू सेंटर में बैठा था, तब एक फैमिली अंदर आई। उसके साथ एक बड़ा हेल्दी डॉग था। आरव ने उसे देखा, पहले तो पहचाना नहीं, फिर डॉग उसके पास आया, उसने आरव के हाथ को स्मेल किया और सडनली उसकी टेल वैग करने लगा। आरव को कुछ स्पेशल फील हुआ, एक अलग एहसास, एक ऐसा एहसास जिसकी शायद कल्पना बहुत कम लोग कर सकते हैं, या जिसको महसूस शायद जिंदगी में एक या दो बार ही किया जाता है। एक वैसा एहसास आरव को हुआ और वो एहसास आरव को इमोशनली कर गया और आरव के आंख में आंसू आ गए। मोटू, हाँ ये वही मोटू था। वो 2 साल बाद एक जान रेस्क्यू नेटवर्क एक लार्ज कम्युनिटी इनिशिएटिव बन चुका था, लेकिन आरव ने कभी इसे अपनी सक्सेस नहीं मानी। एक अवार्ड सेरेमनी में उसने स्टेज पर जब बुलाया गया तो उसने कहा कि मैंने सोसाइटी को कुछ नहीं दिया। ऑडियंस साइलेंट हो गया। आरव बोला, सोसाइटी ने मुझे दिया, सोसाइटी ने मुझे एक इंजर्ड पपी दिया, मुझे एम्पैथी दी, एक कैब ड्राइवर ने मुझे ह्यूमैनिटी दिखाई, वॉलंटियर्स ने मुझे नेटवर्क सिखाया, डॉक्टर ने कंपैशन सिखाया, चिल्ड्रंस ने होप दी, एनिमल्स ने मुझे एक सिंपल लेसन सिखाया, जान छोटी हो या बड़ी हो, जान जान होती है। आरव की ये सारी बातें सुनकर वहां बैठी हुई ऑडियंस जोर जोर से तालियां बजाने लगी। उसके आगे आरव ने कहा, हम अक्सर सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए बड़े सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन चेंज कभी कभी बहुत छोटी जगह से स्टार्ट होता है, एक बाउल पानी से, एक रेस्क्यू कॉल से, एक इंजर्ड एनिमल को रोड से सेफ साइड करने में, एक एडॉप्शन से, एक अवेयरनेस पोस्ट से, या सिर्फ रुककर किसी हेल्पलेस जान को देखने से। बदलाव कहीं से भी आ सकता है, रेस्क्यू कहीं से भी शुरू हो सकता है। आरव की ये सारी बातें सुनकर पूरा जो हॉल था जहां पे वो सारे लोग बैठे हुए थे, वो एक साथ खड़े हो गए और सब आरव को स्टैंडिंग ओवेशन देकर जोर जोर से तालियां बजाने लगे। सब ने आरव के वर्क को रिकॉग्नाइज किया, सब ने उसकी मेहनत को सलाम किया, उसके जज्बे को सलाम किया। और अंत में कुछ महीने बाद आरव एक बिजी रोड से जा रहा था, उसने देखा एक छोटा सा पपी रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। ट्रैफिक फास्ट था, आरव ने बाइक स्लो की, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं रुका, उसके पीछे
एक ऑटो ड्राइवर रुक गया, फिर एक कार, फिर एक डिलीवरी बॉय। तीनों लोग उतरे, उन्होंने ट्रैफिक स्लो किया, पपी को सेफली रोड के उस पार किया। पपी कुछ सेकंड्स तक उन्हें देखता रहा, फिर टेल हिलाकर भाग गया। आरव मुस्कुराया, उसने किसी को कॉल नहीं किया, किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, किसी को रेस्क्यू करने नहीं बोला, क्योंकि अब लोग खुद समझने लगे थे रेस्क्यू एक आदमी का काम नहीं रहा था, वो पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका था। आरव ने बाइक स्टार्ट की और जाते जाते उसने रियर व्यू मिरर में देखा, तीन टीनेजर्स एक दूसरे को स्माइल कर रहे थे, किसी को किसी का नाम नहीं पता।

लेकिन उन्हें ये पता था कि उन्होंने एक जान बचाई थी और शायद उस छोटी सी जान के साथ उन्होंने अपने अंदर की इंसानियत को भी बचाया था। क्योंकि एक एनिमल को रेस्क्यू करना सिर्फ उसकी जिंदगी बचाना नहीं होता, कभी कभी वो रेस्क्यू हमारी सोसाइटी को भी थोड़ा और इंसान बना देता है। और शायद इसीलिए हर जान की कीमत है और हर मदद मैटर करती है और हर छोटी सी काइंडनेस एक बड़ा बदलाव की शुरुआत जरूर कर सकती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर कहानियों की गुल्लक। कहानियाँ जिंदगी में बदलाव जरूर लाती हैं।

0: तेरा कुछ जाहिर कुछ नेहा। आगरी ने मैं मेरा साथ दी, अंतरों से घूम के जब मैं मुखड़े पे आऊं तो मेरे साथ गाइए।
1: ठहरिए देव साहब, पहले आपके नाम आपकी सेहत पर एक गम हो जाए।
2: हाँ हो जाए हो जाए हो जाए।
0: जी मैं शराब नहीं छूता।
1: कौन काफिर छूने को कहता है, बगैर हाथ लगाए चढ़ा जाओ एक ही सांस में।
3: तो लाइए देव साहब, हम ही आपके होंठों पे लगाए देते हैं।
4: पी भी लीजिए देव साहब, बड़ी देर से छलक रहा है वरना दुख होगा इसे।
5: Thank you.

0: आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड ना? भाई सब अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे स्वाद का जायका इस शो के माध्यम से हम हमारे प्यारे ऑडियंस की सेहत का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करते हैं। अर्ज किया है, सावन की बारिश से बदल गया मौसम, मौसम का बदलाव लाया खुशियों वाला ब्लॉसम, खुशियों वाला ब्लॉसम कहे मुझसे आज का खाना होना चाहिए ऑसम। ऑसम खाना मतलब नहीं जंक फूड, जंक फूड मतलब बिग नो। खाना हो ऐसा जो बदल दे मूड, मूड को बदलने अपनाओ देसी खाना, और आचार्य 90 FM वाला कोई सुमधुर गाना। सुमधुर गाने की मनभावन ताल और आरजे भारतीय सीमा पूछ रही अपनों का हाल। स्वाद और सेहत वाला हमारा ये शो, खाना खाते समय रफ्तार को कीजिए स्लो। स्लो रफ्तार मतलब आराम से खाना। हमारी भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया ने है माना, दुनिया के मानने से हाय हुआ है जोश। सुनिए आचार्य 90 FM, मत बैठिए सिर्फ खामोश। खामोश बैठकर अगर हो गए हो बोर, तो बनाइए आज की रेसिपी और बोल में कीजिए पोर। ऑडियंस जी, हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है लाल चावल का सूप। भाई बारिश का मौसम और रिमझिम बरसता हुआ सावन, तब हर किसी का मन करता है कि कुछ गर्मा गर्म टेस्टी खाना खाया जाए। ऐसे में बाहर से कुछ ऑर्डर करने से अच्छा है कि हम अपने घर पर ही कुछ हेल्दी खाना बना ले, है कि नहीं? वैसे भी बाहर वाला खाना खाकर अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने से अच्छा है कि हम कुछ नया और सात्विक खाना अपने घर पर ही बना ले। हमारी आज की रेसिपी कुछ इसी टाइप की है। व्रीही इस संस्कृत नाम वाले लाल रंग के चावलों को इस्तेमाल करके हम बनाएंगे एक टेस्टी सूप। इसमें आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स है। इसे पटनी के नाम से भी जाना जाता है। इन लाल चावलों से रोटी, पायसम, इडली और तरह तरह की रेसिपीज को बनाया जाता है। ये अनपॉलिश्ड चावल होते हैं। लाल चावल का टेस्ट थोड़ा अखरोट जैसा होता है। इन लाल चावलों से बना सूप पीने से पेट भरने वाली फीलिंग आ जाती है, इसलिए सुबह के नाश्ते के समय इसका सूप आप जरूर पीजिए और दिन की शुरुआत एक हेल्दी स्टाइल से कीजिए। चलिए अब हम इसकी रेसिपी को सुनते हैं। लाल चावल मींस व्रीही का सूप बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। लाल चावल लगभग एक मुट्ठी मींस अप्रोक्सीमेटली 4 चम्मच, प्याज एक मीडियम साइज अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम, गाजर एक छोटा सा ये भी 50 ग्राम, बीटरूट 50 ग्राम, पानी 4 बड़े कप, नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं लगभग एक चुटकी नमक ले रही हूँ। देसी घी 1 चम्मच, बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 चम्मच, और मेन इंग्रेडिएंट ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम चावलों को धो लेंगे, फिर हम बीटरूट का छिलका हटाकर उसके टुकड़े करेंगे। इसी तरह से हमें प्याज को भी काटना है। उसके बाद हम गाजर को भी धोकर उसके टुकड़े कर लेंगे। लाल चावल का सूप बनाने की तैयारी तो हमने कर ली, लेकिन इतना काम करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक।
1: Yes, sir. Is that clear? Yes, sir.

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमें लेना है मोटे बेस वाला एक बर्तन। उस बर्तन में हम डालेंगे गाजर, बीटरूट और प्याज। फिर हम उसमें डालेंगे लाल चावल और उसके साथ 4 बड़े कप भर के पानी। इन सारी चीजों को हमें अच्छे से पका लेना है। जब तक ये सारी चीजें उबलकर 1/4 ना बन जाए तब तक हम इसे उबालेंगे। हमें एक बड़ा कप भर जाए इतनी क्वांटिटी वाला इसका सूप बना लेना है। वैसे इसे लो फ्लेम पर पकाना ज्यादा अच्छा है, या फिर आप इसे सीधे प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। लो फ्लेम पर पकाने से इसकी छींटे थोड़ी कम उड़ेंगी। इसे पकाते समय आप चाहे तो नमक ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज सूप को सर्व करते समय आप नमक डालिए। जब तक ये सूप पककर 1/4 ना बन जाए तब तक इसे पकने दीजिए। फिर आप गैस को बंद कीजिए। उसके बाद हमें इसे छानना है, मींस सॉलिड और लिक्विड पार्ट को सेपरेट करना है। उसके बाद हम लेंगे एक सुंदर सा सर्विंग बोल। उसमें बड़े प्यार से हम डालेंगे लाल चावल का सूप। जरा सुनिए तो, थोड़ा रुकिए तो, भाई इतनी भी क्या बेकरारी। इसका डेकोरेशन वाला पार्ट अभी बाकी है। अब इस सूप में हम डालेंगे घी और इसकी सुंदरता को निखारने के लिए हम उस पर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। क्या बात, डार्क रेड कलर के सूप पर कोतमीर की हरियाली, आहा, जैसे उगते सूरज की लाली और साथ में प्रकृति की खुशहाली। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारा लाल चावल का सूप अब हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने के लिए हमारे प्यारे ऑडियंस जी हो गए हैं कितने बेकरार। तो भाई देर किस बात की, झटपट लाल चावल का ये हेल्दी सूप बनाइए और अपनों के साथ मिल बांट कर इस टेस्टी सूप का लुत्फ बड़े मजे से उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। आप चाहे तो इस लाल चावल वाले सूप के साथ रोस्टेड पापड़ भी परोस सकते हैं। इस लाल चावल वाले सूप में मौजूद गाजर और बीटरूट से हमारी हीमोग्लोबिन की लेवल बढ़ती है और प्याज से हमें मिलता है फॉस्फोरस। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। इस लाल चावल की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है हेल्दी वाला सूप। बारिश के मौसम में खिल गई धूप, लाल चावल से बनाइए हेल्दी वाला सूप। हेल्दी वाला सूप पीकर खिल जाएगा रूप। आप बनाकर तो देखिए जनाब, सगळ्यांनाच आवडणार खूप। इन चावलों का रंग है लाल, इसे बनाकर सजाइए अपने भोजन का थाल। लाल चावल संग डाला बीटरूट, अच्छी सेहत बनाकर आप भी बनिए क्यूट। बीटरूट के साथ आ गया गाजर, हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला इस सूप में है सागर। इसे टेस्टी बनाने डाला है प्याज। अब बना ही दीजिए सूप, कल नहीं आज। गर्मा गर्म सूप में एक चम्मच घी, इसे पीते ही फ्रेशनेस ने दस्तक दी। चाहो तो डालो इसमें थोड़ा सॉल्ट, देसीपन अपनाना क्यों लगे फॉल्ट। व्रीही है इसका संस्कृत में नाम, सुनिए आचार्य 90 एफएम सुबह दोपहर और शाम। सूप का जायका बढ़ाने आप पापड़ को कीजिए रोस्ट, टेस्टी लगेगा खाना जब साथ होंगे हमारे दोस्त। ऑडियंस संग दोस्ती निभाने वाला वादा, आरजे भारतीय सीमा कभी ना छोड़ेगी आधा। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी फर्स्ट रेसिपी तो बन गई, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। भाई सूप के साथ अगर क्रिस्पी पकोड़ा भी हो तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। ऐसा पकोड़ा जो डीप फ्राई किए बगैर बना हो। वैसे बारिश के मौसम में फिलहाल स्वीट कॉर्न्स तो आसानी से मिल ही जाते हैं। इन्हें भूनकर या बॉईल करके खाना कॉमन सी बात है, लेकिन आचार्य 90 एफएम के हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए इन स्वीट कॉर्न से हम बनाएंगे क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा। और इसे डीप फ्राई करने के बदले हम अप्पम पात्र में पकाने वाले हैं। तो जनाब तैयार हो जाइए हमारी अगली रेसिपी के लिए, जिसे खाकर हम और हमारे अपने एकदम खुश होने वाले हैं। क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, बॉइल स्वीट कॉर्न के दाने दो कटोरी, आइदर येलो और व्हाइट, प्याज एक, बेसन आधा कटोरी, चावल का आटा दो बड़े चम्मच, हल्दी पाव चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, चाट मसाला पाव चम्मच, हींग एक चुटकी, कोथमीर चार पांच चम्मच, करी पत्ता पांच छह, नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं लगभग एक छोटा चम्मच भर के नमक ले रही हूँ। तेल आवश्यकता के अनुसार। क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा बनाने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले प्याज को हम पतले टुकड़ों में काट लेंगे, फिर करी पत्ता को धोकर उसके भी बारीक टुकड़े कर लेंगे। आप चाहे तो करी पत्ता की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए, इससे इसका टेस्ट और ज्यादा निखर आएगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले हमने क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा बनाने की थोड़ी तैयारी कर ली थी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले हम लेंगे मिक्सर का एक जार, उसमें हम डालेंगे बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स के दाने। हमें उन स्वीट कॉर्न्स के दानों को बिना पानी डाले पीसना है। यहाँ पर आप एक बात का खास ध्यान रखिए, हमें स्वीट कॉर्न को दरदरा पीसना है, इसका फाइन पेस्ट हमें बिल्कुल नहीं बनाना है। फिर इस दरदरे से स्वीट कॉर्न में हम डालेंगे प्याज, उसके बाद हम डालेंगे बेसन और चावल का आटा। इसको एक चम्मच की मदद से हम मिक्स करेंगे। फिर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके साथ हम ऐड करेंगे हल्दी, मिर्ची पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा हींग। इसे भी हमें अच्छे से मिला लेना है। इन सब चीजों के साथ हम डालेंगे करी पत्ता और स्वाद के अनुसार नमक। इस मिश्रण में हमें पानी को नहीं मिलाना है। हमने स्वीट कॉर्न को पहले ही बॉईल किया था, मींस उसमें पानी ऑलरेडी है, और प्याज डालने से उस मिश्रण का मॉइस्चर थोड़ा और बढ़ जाएगा। फाइनली हम डालेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर। इन सब चीजों को हम बड़े प्यार से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिश्रण से पकोड़े बना लेते हैं। ऑडियंस जी, आपको याद तो होगा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम पकोड़ों को फ्राई नहीं करने वाले हैं। इन्हें पकाने के लिए हम यूज करेंगे अप्पम पात्र। सबसे पहले हम अप्पम पात्र को गैस पर गर्म करेंगे। आप चाहे तो नॉन स्टिक अप्पम पात्र को यूज कर सकते हैं। फिर उसके हर खांचे में हम डालेंगे लगभग एक चम्मच तेल। इस तेल को हमें हर खांचे में अच्छे से फैलाना है। फिर चम्मच की मदद से हर खांचे में हम डालेंगे कॉर्न पकोड़ा वाला तैयार मिश्रण। इसे धीमी आंच पर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए हमें पका लेना है। 10-15 मिनट के बाद एक चम्मच की मदद से उन पकोड़ों को हम पलट देंगे। भाई वाह, एक चम्मच तेल में पकोड़े पक गए, क्या बात। उन पकोड़ों को पलटने के बाद हम आधा चम्मच तेल और ऐड करेंगे। वैसे ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर खांचे में तेल ऑलरेडी दिख रहा है तो और तेल डालने की जरूरत नहीं है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमें दूसरे साइड से भी उन पकोड़ों को पकाना है, इसलिए इस प्रोसेस में लगभग 5 मिनट और लगेंगे। यहां पर मैं आपको टिप देना चाहती हूँ, ये पकोड़े बनाते समय हम गैस की फ्लेम को लो रख रहे हैं। हाई फ्लेम पर पकने से हमारे कॉर्न पकोड़े ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल। अब हमारे गर्मा गर्म और क्रिस्पी कॉर्न पकोड़े हो गए हैं तैयार और हमारे प्यारे ऑडियंस जी हो रहे हैं एकदम बेकरार। लेकिन लेकिन लेकिन थोड़ा रुकिए तो, जरा सुनिए तो भाई, इतनी भी क्या बेकरारी। इसका डेकोरेशन करना अभी बाकी है। अब हम लेंगे एक सुंदर सी प्लेट। उस प्लेट में हम रखेंगे केले का पत्ता। उस केले के पत्ते पर हम रखेंगे तैयार क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा। इसकी रंगत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम उस पर टमेटो सॉस को थोड़ी मात्रा में डालेंगे। एक चम्मच की मदद से आप टोमेटो सॉस की पतली लाइनें बना सकते हैं। ऐसा करने से इसको प्रोफेशनल वाला लुक मिलेगा। आप चाहें तो इसके साथ ताजे पुदीना की चटनी को भी सर्व कर सकते हैं। भाई बारिश के मौसम में ऐसी चटपटी और होममेड चीजें बननी ही चाहिए, हफ्ते में कम से कम एक बार। इस तैयार क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा को आप अपने हाथों से एकदम नजाकत से उठाइए, अपनी उंगलियों से उसका टेक्सचर फील कीजिए, फिर उसके अरोमा को महसूस कीजिए। भाई वाह, उसके बाद एकदम तसल्ली से क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा को अपने मुंह में स्वाहा कीजिए।
आहा, क्या बात भाई, मजा आ गया। क्रंची और क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा मुंह में डालते ही हमारे सारे टेस्ट बर्ड्स एकदम खुश हो जाएंगे। फिर बिना इधर उधर ध्यान दिए एक और क्रिस्पी पकोड़ा अपने मुंह में फिर से डालना है। भाई छोड़ो ये डाइटिंग वगैरह, अपना देसी खाना तो सीजन स्पेशल होता है, थोड़ा खाने से आपकी डाइटिंग पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आपका मन एकदम खुश ही हो जाएगा। यकीन ना आए तो इसे एक बार बनाकर तो देखिए जनाब, इसे खाकर आप बारिश को एंजॉय करेंगे। इस क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा। आसमान में बजाया बिजली ने हॉर्न, पकोड़ा में डाला हमने स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न के संग डाला चने का आटा, पकोड़ा खाकर मत देखिए आप वजन काटा, बारिश के मौसम को किया सेलिब्रेट, अप्पम पात्र में पकोड़ा हुआ जनरेट, चावल के आटे से पकोड़ा हुआ क्रिस्पी, थोड़ा सा तेल खाना नहीं बिल्कुल भी रिस्की, डेकोरेशन के लिए डाला थोड़ा सॉस, अपनापन जताने में नहीं है लॉस। चलिए अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज सबसे पहले हमने बनाया एक हेल्दी सूप। लाल चावल, प्याज, गाजर, बीट रूट, इन चीजों को हमने उबाला, फिर उसे छानकर उसमें नमक और घी को भी डाला। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने उस पर कोथमीर डाली। इस प्रकार हमारा लाल चावल मींस व्रीही का सूप तैयार हो गया। फिर हमने बनाया

आपको हमारा आज का एपिसोड कैसे लगा ये हमें जरूर बताइए, और अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो वो भी हमें बताइए। लेकिन उसके पहले आपके फेवरेट आचार्य 90FM चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए मायने रखता है। चलिए अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: श्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। भाई कैसे हैं हमारे प्यारे ऑडियंस जी, ऑल गुड ना? गणेश चतुर्थी के सीजन में सब अच्छा ही होता है और हमारे स्वाद का जायका इस शो पर कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज को ट्राई करने का एक और अच्छा बहाना हमें दोबारा से मिला है। महाराष्ट्र में त्योहार तो कई सारे मनाए जाते हैं और गणपति मीन्स गणेशोत्सव में सेलिब्रेशन मतलब एक से एक टेस्टी खाने का मौसम है कि नहीं। वैसे हम सबके फेवरेट गणेश जी के स्वागत में कई सारे व्यंजन बनते हैं, जैसे कि मोदक, लड्डू, पूरनपोली, शीरा, पायसम या खीर वगैरह वगैरह। ये सब तो मिठाइयां हैं, अब मीठा खाएं तो कितना खाएं भाई साहब। गणेश जी की आरती के समय तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान चने की दाल को यूज करके एक चटपटी सी रेसिपी को बनाया जाता है। वाटली दाल इस नाम से फेमस रेसिपी को खाना मींस मिठाई खाने के बदले कुछ इंटरेस्टिंग और टेस्टी खाने वाली फेवरेट बात इस तौर पर हम देख सकते हैं। ये एक टाइप का ड्राई स्नैक है। वाटली इस शब्द का मीनिंग है पीसी हुई और दाल तो हम सब जानते ही है, वाटली दाल मतलब पीसी हुई दाल। भिगोई हुई चना दाल को दरदरा पीसकर कुछ मसालों के साथ भूनकर तैयार किया जाता है। अब हम इस वाटली दाल की रेसिपी को सुनते हैं। वाटली दाल बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, चना दाल एक कटोरी। इसे अच्छे से धोकर 4-5 घंटे तक पानी में भिगोकर रखना है। हरी मिर्ची स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 3-4 हरी मिर्ची ले रही हूँ। जीरा एक छोटा चम्मच, अदरक 1 इंच, इसे धोकर कद्दूकस कर लेना है। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 1/2 चम्मच नमक ले रही हूँ। तेल 2 बड़े चम्मच, राई मींस सरसों 1/2 चम्मच, हींग 1 चुटकी, कड़ी पत्ता 10 से 12 पत्ते, नींबू का रस 1 छोटा चम्मच, शक्कर 1/2 चम्मच, बारीक कटा हुआ हरा धनिया अप्रोक्सीमेटली 2 चम्मच, ताजा नारियल कद्दूकस करके अप्रोक्सीमेटली 4 चम्मच और मेन इंग्रेडिएंट ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली है। भाई हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स तो अब हो गए हैं तैयार और वाटली दाल की रेसिपी सुनने के लिए हमारे प्यारे ऑडियंस जी हो रहे हैं कितने बेकरार। तो चलिए अब हम इस वाटली दाल की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मिक्सर का एक जार, उसमें हम डालेंगे भिगोई हुई चना दाल। हमें चना दाल को पीसना है। इस प्रोसेस में हम एक्स्ट्रा पानी को हटा देते हैं। उस चना दाल में हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची के टुकड़े और जीरा। फिर हम डालेंगे अदरक, हल्दी और थोड़ा सा नमक। इन सब के साथ हमें डालना है हमारा मेन इंग्रेडिएंट ढेर सारा प्यार। अब इन सब चीजों को हमें दरदरा सा पीस लेना है। ध्यान रहे कि मिक्सर में पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। अब इस पीसी हुई दाल को हम ट्रांसफर करेंगे एक बर्तन में। इस बर्तन को हम प्रेशर कुकर में रखेंगे। मध्यम आंच पर लगभग 2 सीटी होने तक हमें इसे पकाना है। इतना सारा काम करके मैं तो थक गई भाई साहब, आई नीड अ ब्रेक।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। भाई लगभग 2 सीटी आने तक हमने चना दाल को पका लिया है। अब लगभग 20-25 मिनट तक हम प्रेशर कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाए तब हम एक चम्मच की मदद से दाल को अलग अलग कर देंगे। अब इस पकी हुई दाल को हम लगाएंगे खुशबूदार तड़का। इसके लिए एक कढ़ाई में हम गरम करेंगे थोड़ा सा तेल। तेल गरम होने के बाद उसमें हम डालेंगे राई। राई को आप चटकने दीजिए। फिर हम उसमें ऐड करेंगे जीरा, हींग और कड़ी पत्ता। आहाहा, क्या महक! कड़ी पत्ता को डालते ही हम गैस को बंद कर देंगे। फिर इस खुशबूदार तड़के में हम डालेंगे पकी हुई दाल, उसके साथ नींबू का रस और थोड़ी सी शक्कर। एक चम्मच की मदद से हमें इसे मिक्स करना है। भाई जरा सुनिए तो, थोड़ा रुकिए तो, इसका डेकोरेशन वाला पार्ट अभी बाकी है। अब हम लेंगे सुंदर सी एक कटोरी। उस कटोरी में बड़े प्यार से हम डालेंगे कढ़ाई वाली दाल। फिर उस पर हम डालेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर और उसके साथ कद्दूकस किया हुआ ताजा ताजा नारियल। भाई वाह, येलो कलर की चना दाल पर हरी कोथमीर और सफेद नारियल, जैसे के सुनहरी धूप से खुश हरियाली और हरियाली के साथ चमकती हुई बर्फ। क्या बात! यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। Stay tuned.

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी वाटली दाल अब भोग लगाने के लिए तैयार हो गई है। अब इसकी सात्विकता को बढ़ाने के लिए हम उस पर रखेंगे एक तुलसी पत्र। अब बड़ी श्रद्धा से अपने दोनों हाथों को जोड़कर हम भगवान श्री गणेश की आरती करेंगे। आरती होने के बाद इस वाटली दाल का हम भोग लगाएंगे। ऐसा करने से इसकी सात्विकता और ज्यादा बढ़ेगी। यकीन ना आए तो इस वाटली दाल को आप एक बार जरूर बनाइए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इस वाटली दाल को एक बार और जरूर मांग कर खाएंगे। भाई, हमारी संस्कृति और परंपरा की यही तो खासियत है, क्योंकि स्वाद और सेहत इन दोनों बातों को हम भोग के प्रसाद के रूप में खाते हैं और इसे अकेले नहीं बल्कि अपनों के साथ मिल बांटकर खाते हैं। इस वाटली दाल की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है वाटली दाल। गणेश जी के स्वागत में तरह तरह के भोग, मीठे खाने संग चटपटी दाल का संयोग। सिर्फ मीठा खाकर अगर हो रहे हो बोर और टेस्ट बर्ड्स करे चटपटा खाने का शोर, तब पेश कीजिए आप चटपटी वाटली दाल। इसे खिलाकर पूछिए आप अपनों का हाल। भिगोई चना दाल संग अदरक और मिर्ची, वाटली दाल को खाने सबकी नजर तिरछी। गरम तेल में डाला राई जीरा का तड़का, इसे पसंद करे हर लड़की और लड़का। तड़के में डाला राई और जीरा, कोथमीर संग नारियल जैसे हरियाली में हीरा। इसका स्वाद निखारने डाला नींबू का रस, मिक्सर में किया चना दाल को क्रश। वाटली दाल का टेस्ट है एकदम विशेष। तैयारी हुई है पूरी, अब पधारेंगे श्री गणेश। श्री गणेश के लिए हमारी छोटी सी सेवा, थाली में सजाइए मोदक लड्डू और मेवा। देसी खाने में है सेहत का राज छिपा, हेल्दी फूड के भोग से होगी बाप्पा की कृपा। आचार्य 90 FM पर स्वाद और सुरों की जोड़ी, विघ्नहर्ता के स्वागत में हमारी भी कोशिश थोड़ी। हमें आशीर्वाद देता गौरी पुत्र का हाथ। सब्सक्राइब आचार्य 90 FM और दीजिए हमारा साथ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। चटपटी सी वाटली दाल तो हमने बना ली, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। भाई, गणेशोत्सव तो कई दिनों तक सेलिब्रेट होता है और हमारे गणपति बाप्पा को हर रोज नया मींस कुछ अलग टाइप का भोग लगाया जाता है। वैसे हमारा पारंपरिक स्टाइल वाला खाना बनाने से हमारी सेहत बिल्कुल अच्छी ही रहती है। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी।

वेलकम बैक। आप NTFM और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। हमारे महाराष्ट्र में एक स्पेशल भोग को चढ़ाया जाता है। पांच या पांच से ज्यादा खाद्य सामग्रियों को एक साथ मिक्स करके बनने वाला ये ट्रेडिशनल और फेमस प्रसाद है। ये टेस्ट में मीठा होता है। खिरापत इस नाम से फेमस इस रेसिपी को आज हम हमारे आचार्य 90FM के स्टूडियो में बनाने वाले हैं। इसे पंच खाद्य के नाम से भी जाना जाता है। ये बेहद आसान और टेस्टी महाराष्ट्रियन रेसिपी है। चलिए अब हम खिरापत बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। खिरापत बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, सूखा नारियल मींस खोपरा, इसे कद्दूकस कर लेना है, और हमें अप्रोक्सीमेटली एक कटोरी भर के कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल चाहिए। फिर हमें चाहिए सूखा खजूर मींस खारिक, जिसे ड्राई डेट्स कहते हैं, ये लगभग 7 से 8, खसखस एक बड़ा चम्मच, खड़ी साखर मींस मिश्री 4 चम्मच, किशमिश 2 चम्मच, इलायची 4। खिरापत बनाने की रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। सूखा नारियल तो हमने पहले ही कद्दूकस करके लिया है। अब हम खजूर को बारीक टुकड़ों में काटेंगे या फिर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम इलायची का पाउडर बनाएंगे। यहाँ पर मैं आपको हमेशा वाली एक टिप देना चाहती हूँ। साबुत इलायची को थोड़ी शक्कर के साथ मिक्सर में पीसने से इलायची का पाउडर एकदम आसानी से बनता है। फिर हम लो फ्लेम पर खसखस को भून लेंगे मींस लगभग 3-4 मिनट तक। अब मिश्री यानी कि खड़ी साखर को मिक्सर के जार में डालकर उसका पाउडर बनाना है। अब हमें लो फ्लेम पर नारियल को भी भून लेना है। इसे हल्का सुनहरा और कुरकुरा होने तक मींस अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट तक भून लेना है। फिर हम इसे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम लेंगे मिक्सर का जार। उस जार में हम मिक्स करेंगे खसखस और खजूर को। इसे एक साथ मिलाकर हमें इसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे भुना नारियल। फिर पल्स मोड पर हम मिक्सर को चलाएंगे लगभग 3-4 बार बस। अब हम इसमें डालेंगे मिश्री मींस खड़ी साखर पाउडर, इलायची पाउडर और किशमिश। इसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। दैट्स इट। अब इस तैयार खिरापत को हम रखेंगे चांदी की सुंदर सी कटोरी में। फिर एकदम श्रद्धा से हम भगवान श्री गणेश की आरती करेंगे। उसके बाद इस खिरापत का भोग हम बाप्पा को लगाएंगे। उसके बाद क्या करें? तो भाई आरती होने के बाद अपनों के साथ मिल बांट कर इस खिरापत का लुत्फ मजे से उठाइए। भाई बारिश के मौसम में ऐसा हेल्दी फूड खाना, वो भी बाप्पा के प्रसाद के रूप में, ये तो एकदम अच्छी बात है। और अपने साथ हो तब इसकी मधुरता और निखर कर स्वाद लाती है। अगर आपको यकीन ना आए तो इस गणेशोत्सव पर आप इस खिरापत को जरूर बनाइए। अच्छा खाना खाइए और हमारे आचार्य 90FM के गीत गुनगुनाइए। इस खिरापत की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है मिठास वाली खिरापत। हेल्दी खाना खाने की दिखेगी शराफत, श्री गणेश जी की आरती में मिठास वाली खिरापत। जंक फूड खाना हेल्थ वाइज है रिस्की, खिरापत में डाला भुना खोपरा क्रिस्पी, खोपरे संग डाला थोड़ा सूखा खजूर, और भी चीजें डाली हैं, जरा सुनिए तो हुजूर। ड्राई डेट्स और खोपरे संग खसखस और इलायची, पारंपरिक खिरापत खाइए, ये नहीं है विलायती। मधुरता को बढ़ाने डाली खड़ी साखर, खुश होंगे आप खिरापत को खाकर, जब स्वाद और संस्कृति मिल जाए एक साथ, तब अपनापन जताने की
खाने और खिलाने की बात। विघ्नों को हरने पधारे हैं श्री गणेश। हुआ खुशियों का आगमन, नमन तुम्हें हे विघ्नेश। श्री गणेश का मीनिंग नई सी शुरुआत। आचार्य 90 FM पर न्यू रेसिपीज हर बार। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। चलिए अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हमने सबसे पहले बनाई एक चटपटी सी वाटली दाल। भिगोई हुई चना दाल में हरी मिर्ची को डालकर हमने पीसा, फिर उसमें अदरक, हल्दी और नमक को भी ऐड किया। उसके बाद इसे प्रेशर कुकर में पकाकर राई, जीरा और हींग का छौंक लगाया, फिर धनिया और ताजा नारियल से उसे सजाया। उसके बाद हमने बनाई एक पारंपरिक रेसिपी। रोस्टेड खोपरा, खसखस और खारिक मींस ड्राई डेट्स को एक साथ मिलाकर उसमें शक्कर और इलायची को मिक्स किया। इस प्रकार गणेशोत्सव के इस पावन पर्व को हमने एकदम पारंपरिक तरीके से सेलिब्रेट किया। ऑडियंस जी, किया के नहीं जी? बिल्कुल किया। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए, और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना हो तो वो भी हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और हमारे आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले हमारे आचार्य 90 FM चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी दोस्ती एकदम पक्की हो जाएगी। ऐसा करने से हमारी और आपकी दोस्ती एकदम पक्की हो जाएगी। चलिए अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का। वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। RJ भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: everyone, you are listening Acharya 90 FM, your own radio. Today we have with us Ms. Achal Singh and guest with us Ms. Smita Mishra. And also we have our own intern Pranav Nair. And we are going to talk about suicide prevention. Let me introduce our guest. So Smita is mental health professional visiting faculty at NMIMS College, actively doing awareness session around mental health, and a trauma-informed psychologist. So, I would like to ask a question to our guest, Smita ma'am. Let's tell our audience, keep basic, what is mental health?
1: Okay, so mental health again, we isolation mein I feel discuss nahi karna chahiye. Jab hum health ki baat karte hain, health mein WHO की डेफिनेशन को हम देखें तो इट टॉक्स अबाउट कि अ हेल्दी पर्सन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिजीज का एब्सेंस है. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, इट इज़ आल्सो अबाउट कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग, जहाँ पे हमारा साइकोलॉजिकल हेल्थ, हमारा फिजिकल हेल्थ सब काम करता है. तो मेंटल हेल्थ अगेन, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, लोग जो है उसे कंफ्यूज करते हैं मेंटल इलनेस के साथ. सो नॉट एवरीवन इज मेंटली इल, बट एवरीवन हैज अ मेंटल हेल्थ दैट दे नीड टू टेक केयर. Their emotions, their feelings, their personality.
0: So आजकल हम देख रहे हैं कि specifically अगर बात किया जाए young adults के बारे में, what would be your advice on mental health? How they can prevent themselves from the suicidal thoughts and everything?
1: How they can prevent themselves from suicidal thoughts? Okay. I think again हमें basic irrespective of their age, भले वो बच्चा हो, teenager हो या older कोई हो, जब उन्हें ऐसा feel होने लगता है कि there's no point in staying here, there's nothing for me to look forward to, और काफ़ी ज़्यादा pain है, तो इस pain को ख़त्म करने का जो एकमात्र तरीका है, it is to end this life. तो अगर ये life ही नहीं होगी तो ऐसा कोई pain भी नहीं होगा. This is what suicide. And then how they can prevent it is, there are different like methods to do that, but jab hum suicide prevention ke bare mein baat karte hain, I just want to take a moment and highlight ki jo suicide prevention ka responsibility hai, ye akele ek bacche ke upar ya akele ek individual ke upar nahi aana chahiye, jo usually aata hai. Kyunki hum suicide prevention ke bare mein jab hum baat karte hain to hum bolte hain ki it is up to that individual or their therapist, but I feel that prevention is a collective responsibility. And when I say collective responsibility, I mean ki everyone has a role. A teacher has a role, a parent has a role, classmates or peer has a role. Larger scale mein dekhe to school as an institution ya office as an institution has a role, media has a role ki wo kaise डिपेक्ट कर रही है, कैसे प्रेजेंट कर रही है सुसाइडल केसेस, क्या उसको वो सेंसेशन बना रही है या सेंसिटिवली हैंडल कर रही है. देन अ वेरी बिग रोल ऑफ पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट, स्टेट, डू दे हैव दैट इनफ रिसोर्सेज जहाँ पे प्रिवेंशन के लिए, मतलब वो कंडीशन है जहाँ पे वो लास्ट स्टेज पर पहुँचेगी ना, तो प्रिवेंशन के लिए अकेले एक बच्चे पे वो नहीं आना चाहिए कि हाउ दे शुड डू इट. इट शुड बी अ कलेक्टिव एफर्ट. Collective responsibility.
2: So, Smita, I wanted to ask, what do you think, what is the very general problem that every teenager goes through, which might lead to take this big step in their life? It can be anything. But what do you think, with your experience, is the general problem of
1: asking about just general problems? Again, a disclaimer that whatever I will share here right now is based on my readings, my मिस आउट ऑन फ्यू, बट जो डेटा भी हमें बार बार बताती है दैट इज ए वुड बी लोनलीनेस. लॉट ऑफ टीनेजर्स, अ लॉट ऑफ यंग एडल्ट्स टुडे फील लोनली डिस्पाइट हैविंग लॉट ऑफ पीपल अराउंड देम, एंड इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट ट्राइंग टू डू एनीथिंग टू बी फील लेस लोनली. अगर 2023 में WHO ने तो डिक्लेयर कर दिया था कि इट्स अ पब्लिक थ्रेट, लोनलीनेस इज अ पब्लिक थ्रेट, बट ऐसा नहीं है कि नहीं ट्राई कर रही है. उसका जो कॉन्ट्राडिक्ट अगर हम आयरनी देखते हैं तो यही जनरेशन है जो एक्सट्रीमली ट्राई कर रही है टू फील लेस लोनली. देयर इज प्रेशर टू एंजॉय, देयर इज प्रेशर टू हैव फन, प्रेशर टू मेक कनेक्शंस. इट्स द सेम थिंग लाइक इफ वी वांट टू टेक एन एग्जांपल, वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ डेटिंग एप्स. अ लॉट ऑफ यंग एडल्ट्स, अ लॉट ऑफ टीनएजर्स, अ लॉट ऑफ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आर यूजिंग डेटिंग एप्स, एंड आई एम इन नो पोजीशन टू से कि वो यूज करना गलत है या नहीं है. इट्स अ पर्सनल चॉइस, इट इज हेल्पिंग पीपल फाइंड कनेक्शंस, देन व्हाई नॉट. बट देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेटिंग बर्नआउट, जो लोग फील कर रहे हैं, व्हिच इज वेरी सिमिलर टू वर्कप्लेस बर्नआउट. और वर्कप्लेस बर्नआउट में भी वही इमोशनल एग्जॉशन होता है, सब कुछ लाइक एवरीथिंग इज सेम, इज जस्ट दैट द डिफरेंस इज यहां पे हम जो स्वाइप करते हैं डेटिंग ऐप में, द जॉब हियर इज टू फाइंड कनेक्शन. सो देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जॉशन दैट दीस पीपल नॉट दिस जनरेशन फील, सॉरी फॉर द टर्म, आवर जनरेशन फील टू मेक अ मीनिंगफुल कनेक्शन. सो देयर इज लॉट ऑफ सेंस ऑफ लोनलीनेस, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस दिस आल्सो कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप. Relationship, it is beyond two partners who are dating, it goes to the families as well. A lot of the time a teenager simply feels ki why are they not listening to me, yeah, why is it so difficult for them to understand what I'm telling them. On the other hand, parents are like we are trying to protect our children and whatever we are saying is because of their own betterment. So there's a lot of conflict, there's a lot of communication gap in this. There's also emotional gap ki hum nahi samajh pa rahe ki what the other person is feeling. So that is B. I think I pointed out loneliness and then family conflict, and there's also external pressure like societal pressure about performance, about marks. Marks se related kafi zyada news mein aa jata hai about the cases, but it is only just a tip of the iceberg. So agar hum data ki baat kare to only 1 point something people are only like. And also one more thing, there is not one particular cause to suicide. Agar again media mein bhi represent karte time kafi log na narrow down kar dete hain. Agar aapko recent yaad rahega news mein jo aaya tha about one family, a teenager jumped from the cliff and then both the parents also followed, and media mein usne usko sensation bana diya gaya tha jahan pe ek particular reason ke sath usko connect kar diya gaya. But it is not just about one particular reason, it is the result of so many other stressors that a person is facing.
3: So ma'am, I do have a question about, like aapne bole karke family ke bond ki wajah se bhi jo person hai wo suffer karta hai. So I do want to know karke agar family ke sath bond acha nahi hai. On a personal note, I think either the person choose another character to live, like wo unhe high pe bhi leke ja sakta hai. And on a negative note, वो person extreme depression में जा सकता है. I do wanna know your thoughts on that.
1: Help me understand the question better. You said that the conflict between parents.
3: Should I repeat, ma'am?
1: Yeah.
3: Like ma'am, अगर एक बच्चे का अपने dad के साथ में अच्छा bond नहीं है, so वो perspective से वो बच्चा either एक another personality choose करके पे जा सकता है. अनदर पर्सनालिटी मैम लाइक गिव ऑन द इमोशन, लाइक इमोशंस को पीछे छोड़ के. सो ये इफेक्ट करता है क्या मेंटल हेल्थ को?
1: यस इफेक्ट करता है, बट आई थिंक अब दो चीज कुछ कंपेयर कर रहे थे. आई वुड वांट टू कंप्लीट
3: इफेक्ट करना इन द सेंस, अभी जैसे बच्चा अगर अपने मॉम डैड से थोड़ा दूर रह रहा है, सो लाइक वो एक इमोशनल अवेलेबिलिटी कम हो रहा है उसके पास. So he is just trying to replace the thing with some other sports ho gaya, like uski personal life ho gayi. So does it help?
1: Okay, now there's something called as coping mechanism jo har individual इंडिविजुअल का अलग अलग होता है. नाउ इन दिस सिचुएशन कहीं पे सपोज अगर हम बात करें कि फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, अगर फैमिली इन जनरल टॉक्सिक है कि वहाँ पर रह के हमारा एनर्जी और ड्रेन हो रहा है, हम खुद से और एक्सप्लोर चीज़ें नहीं कर पा रहे, खुद को और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, देन फॉर समवन इफ दे आर दे हैव

0: एंड द यंगर वंस, कैसे हम वो पैटर्न को समझें एंड व्हाट वी कैन डू फॉर देम एंड हाउ विल वी यू नो कंफर्ट देम और यू नो मेक देम.
1: थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन मैम. कमिंग फ्रॉम अ टीचर, जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा था कि कलेक्टिव एफर्ट है, सबका रोल है, सम वेरी ग्लैड दैट दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम अ टीचर्स पर्सपेक्टिव. कि अगर स्टूडेंट या इरेस्पेक्टिव लाइक द रिलेशनशिप कोई हमसे छोटा किसी डिस्ट्रेस में है, तो पहले हम वो साइंस को कैसे रिकॉग्नाइज करें. आपने करेक्टली कहा कि जैसे अगर बच्चा, तो हमें थोड़ा नोटिस करना है कि सडन चेंज क्या आ रहा है पर्सनैलिटी में. अगर आउट गोइंग बच्चा सडनली शांत हो जा रहा है, तो एक वो क्लियर कट साइन है. बट देन इसके अलावा भी कुछ साइंस है जो हम मिस कर देते हैं, जैसे कि अगर बच्चा हमें पता है कि किसी डिस्ट्रेस से गुजर रहा था, उसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन सडनली अब काम हो गया है, एकदम ही शांत हो गया है, या फिर एकदम ही पॉजिटिव वे में सब चीज़ें ले रहा है, तो काफ़ी बार लोगों को लगता है कि नाउ थिंग्स आर बेटर. बट एक्चुअली थिंग्स आर द थिंग इज मेंटली उसने गिव अप कर दिया, मेंटली उसने एक डिसीजन बना लिया है कि अब तो टेंशन लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है, अब रोके भी कोई फ़ायदा नहीं है, दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू डू. व्हाट एज अ टीचर वी कैन डू टू प्रिवेंट दिस इज, फर्स्ट जब आप चेंजेस ये सब देख रहे हैं, एक्नॉलेज दैम, सिट विद दैट चाइल्ड एंड बी वर्बल अबाउट वॉट यू सॉ और वॉट यू नोटिस एंड विदाउट बीटिंग अराउंड द बुशेस डायरेक्टली आस्क, आर यू थिंकिंग अबाउट किलिंग योर सेल्फ, आर यू थिंकिंग अबाउट सुसाइड. नाउ ये बोलने में बहुत डिसकम्फर्टिंग लगता है कि ये डायरेक्टली कैसे बोले, इससे तो फिर हो जाएगा कि हम आइडियाज़ दे रहे हैं. लेकिन अगर आपने देखा कि कहीं कहीं साइंस है, बच्चा बोल रहा है कि देयर इज नो पॉइंट इन लिविंग, या मेरा बस हो गया है, या देख रहे हो आपके बच्चा कहीं, पेरेंट्स अगर ये सुन रहे हैं, तो बच्चा सडनली अपने पासवर्ड सब लिख रहा है, या सडनली रैंडमली किसी फ्रेंड को टेक्स्ट कर रहा है थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, ऑल ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट साइंस टू पिक अप एंड देन डायरेक्टली आस्क, Is there anything you want to tell me? And I'm here to listen to you. और डायरेक्टली वो टॉपिक निकालो, क्योंकि हो सकता है कि आपके अलावा एज ए मतलब टीचर ने उनको पूछा है, शायद उसके अलावा पहले किसी ने नोटिस नहीं किया हो, पहले कभी किसी ने ये शायद ये थॉट के बारे में उन्होंने भी खुद से कभी बोला ना हो, तो वो जब आप सामने से डायरेक्टली पूछेंगे तो उन्हें एक स्पेस मिलेगा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए. तो किसी को अगर कंटिन्यू करें हम, तो एक गेट कीपर ट्रेनिंग होती है जहाँ पे हम ट्रेनिंग देते हैं लोगों को कि सुसाइड प्रिवेंट कैसे करें, क्या नेक्स्ट स्टेप करें. तो एक मॉडल होता है विच इज़ कॉल्ड एज QPR मॉडल. तो क्यू में यू आस्क क्वेश्चंस एंड देन यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली पूछो. देन पी में इट इज़ नॉट लाइक कि आपको सडनली उसको परसुएड करना है कि डोंट डू इट. सडनली वो होगा भी नहीं और वो शायद उस स्टेट पे है भी नहीं कि सारी लॉजिकल रीजनिंग वो एक्सेप्ट कर पाए. तो उस टाइम पे ज़रूरी है कि आप डिले करें जितना उनके मतलब असेस करें क्वेश्चनिंग के टाइम पे कि रिस्क कितना है. अभी असेस कैसे करेंगे, चेक करना कि सिर्फ आइडिया है या प्लान भी है, तो सुसाइडल आइडिएशन है या सुसाइडल प्लान भी है. अगर उन्होंने प्लान भी करके रखा है कि आसपास ये है तो आई कैन डू दिस या आई कैन जंप फ्रॉम दैट, सो द रिस्क इज मच हायर एट दैट. वो रिस्क असेसमेंट करने के बाद पर्सुएशन पे यू जस्ट हैव टू सिट देयर विद देम, पर्सुएड देम दैट दिस इज नॉट द टाइम टू मेक टेक एनी एक्शन एंड आई एम हियर विद यू. इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गिविंग देम सॉल्यूशन, जस्ट टेल देम दैट दे आर हियर विद यू. तो वो लोनलीनेस का जो मैंने कहा था वो भी थोड़े उन्हें फील होगा कि यस समवन इज देयर एंड दे डू नॉट हैव टू कैरी दिस मच पेन ऑन देयर ओन, समवन इज देयर फॉर देम टू शेयर इट विद. बोलो कि हम साथ में ये चीज़ हैंडल करेंगे. Then R is to refer it to people who are experts, for example social workers, counselors, psychiatrists, emergency care centers. अगर ये सब immediately available नहीं है तो आपको कुछ helpline numbers है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप उनके साथ बैठो और बोलो कि let's together call them and let's talk to them. तो telemenes एक helpline number है, iCall है जिसको हम use कर सकते हैं. आप हेल्पलाइन नंबर उसे दो, देन उनको इमीडिएटली छोड़कर ये सब देख के चले ना जाए. इट इज़ इम्पोर्टेंट कि अगर आप

0: ग्रह हायर है तो बी अराउंड देम एंड सी कि आसपास उन्होंने कोई भी ऐसे लीथल मटेरियल नहीं है, कोई भी ऐसे ऐसी चीज़ नहीं है जिससे सेल्फ हार्म हो सके, जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट या कोई ऐसा एरिया जहाँ से वो जंप कर सके. सो इट्स वेरी नेसेसरी दैट यू स्टे अराउंड देम इवन इफ दे पुश यू कि नहीं आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई डोंट वॉन्ट टू सी यू, तभी भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टे विद दैट.
1: Insightful information and definitely ये सभी के काम आने वाला है, not just as a teacher but as a adult

0: welcome back. And we were talking about suicide prevention. And we have a guest with us, Ms. Smita Mishra. And we will continue the topic.
1: So, ma'am, as a mental health professional, I have heard that there are so many myths and so many stereotypes around someone who's struggling through mental health or someone who has reached to a point where they are getting suicidal ideation. And the common myth that I have seen or heard about is that if you talk about suicide, it can make things more worse. So I want to ask that, is that true?
2: No. A single word answer, no. Talking about it helps us open the channel for conversation. The problem is not talking about it. And that exactly what leads to myth and stigma around mental health. Because we can't talk about it. Why if, suppose, what you said, last moment to reach, so this is that we start waiting. If suppose there is a physical problem, if there is a burning sensation in the chest, तुम तुरंत जाते हैं डॉक्टर के पास. डॉक्टर एक्सरे वगैरह करा लेते, सब टेस्ट कराते, सब नॉर्मल भी आता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इट वॉज जस्ट एन एसिडिटी. बट हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं जस्ट टू गेट चेक्ड. हम वो हेल्प लेने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग हेल्प फॉर योर मेंटल हेल्थ, हम डिले कर देते हैं. और वो डिले के वजह से बात फिर इतनी आगे बढ़ जाती है कि दैट सुसाइडल आइडिएशन इज नाउ हैज रीच्ड टू द पॉइंट जहाँ पे person is actually thinking about ending their life.
1: That is completely true. That is correct. Can you tell me certain myths or stereotypes that you think that are very common among everyone regarding suicide?
2: Yeah, myths like talking about it will give out the impression that you are weak or you're not strong enough. Talking about it is not normal. So यही जो not normal वाला phenomena है, लोगों को comfortable इसलिए भी नहीं feel होता है बात करने में, not just because कि आसपास लोग नहीं है trust करने वाले. हो सकता है कि trustful लोग हैं, हो सकता है family supportive है, teacher supportive है, but उन्हें वो बोलना नहीं आ रहा है क्योंकि कभी उन्होंने देखा नहीं है वो कोई model करने वाला, कभी कोई adult था नहीं. So why most of the younger people are struggling to speak about it is also because a lot of older people are still struggling to talk about it. They have never experienced a grown-up be vulnerable. उन्होंने नहीं देखा है लोगों को express करते हुए उनकी weaknesses या अपने emotions के बारे में बात करते हुए, उन्होंने नहीं देखा है. तो when a child is growing up या थोड़े वो teenage या adult इसमें पहुँचते हैं तो वो धीरे धीरे accept करने लगते हैं कि I think यही रियलिटी है, मुझे अगर मैच्योर रहना है देन आई नीड टू बी टफ या आई शुड नॉट शेयर इट विद एनीवन एंड आई शुड डील विद इट ऑन माय ओन. एंड देयर आर अगेन मी एज आई सेड कि मीडिया आल्सो हैज अ रोल इन इट. सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम दैट सॉर्ट ऑफ ग्लोरीफाइज दिस होल थिंग ऑफ डूइंग इट ऑल अलोन. एंड आई एम नॉट सो नॉट आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ डूइंग थिंग्स अलोन, बट इट इज नॉर्मलाइज्ड इन सच अ वे, इट इज ग्लोरीफाइड और रोमांटिसाइज्ड इन सच अ वे. It is limiting people to take help. Why in India people who have never read, who were never interested in reading, why are they interested in reading self-help books? It is because the idea of helping themselves, taking care of their mental health is only up to them, their own responsibility. तो बाकी लोगों को उस पर involve करने का कोई ज़रूरत है नहीं. ये all these things are sort of limiting them in asking for help. Yeah. Asking for help would be a secondary. Simply talking about it is because उन्होंने नहीं देखा है कि कोई बड़ा उसके बारे में बात कर रहा हो.
3: Exactly. I would give opinion about this कि हम generational gap. When you talk about parents and when you talk about children, there is a lot of generational gap and understanding gap. जहाँ पे if we see आजकल के generation में mental health is very much important. एंड ओल्डन जनरेशन को आप देखोगे जब, तो वहाँ पे आई थिंक फिजिकल हेल्थ वॉज मच मोर इम्पॉर्टेंट एंड अवेयरनेस नहीं थी.
2: राइट,
3: आज की जनरेशन में वो अवेयरनेस है. अगेन मीडिया कम्स इन द प्ले
2: वेयर इट हैज हेल्प्ड इन अ पॉजिटिव वे.
3: एंड थ्रू द मीडिया हम बता रहे कि मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है.
2: एब्सोल्युटली.
3: एंड छोटी से छोटी बातें रिपोर्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है.
2: राइटली रिपोर्ट करना, सेंसिटिवली रिपोर्ट करना कितना.
3: सो आज मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो छोटे से छोटी चीज़ों को लेके डिस्टर्ब होते हैं. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कभी कुछ शेयर ही नहीं किया, बट दे आर इन टू वेरी मेजर, आई वुड नॉट यूज वर्ड डिप्रेशन, बट उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई होती है, वो शेयर नहीं कर पाते. दे बिहेव वेरी नॉर्मल. एंड कुछ बच्चे ऐसे हैं कि छोटी से छोटी बातें होती है तो दे आर एक्सप्रेसिव. So their nature is
2: हर स्टूडेंट का तरीका अलग होता है एक्सप्रेस करने का. कई लोग कंफर्टेबल है शेयर करने के लिए कर पाते, कई लोग कंफर्टेबल होके भी उन्हें शायद नहीं वोकैबुलरी मिल रही है कि कैसे कर पाए. और मैम आपने एक चीज़ बोली कि कई बार बच्चे जो है डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं बट कभी वो दिखाते नहीं है. दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस बिकॉज इट्स अ वेरी रियल थिंग. कई बार अगर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनके घर पे किसी ने सुसाइड किया होता है तो लोग बोलते हैं कि हमने कभी देखा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है या कभी लगा ही नहीं कि ये इंसान अपनी जान दे सकते हैं. तो बाकी सारे जो चेंजेस हैं बिहेवियर में इमोशन में जो दिख रहे हैं ठीक है हम वहाँ से हेल्प कर सकते हैं, बट काफ़ी बार साइंस ऐसे होते हैं जो नहीं दिखाई देते या जो काफ़ी नॉर्मल हो गई है कि हमेशा हंसते रहना एक दूसरे की हेल्प करते रहना, तो लोग जो है यहाँ पर फिर बात नहीं करते, उनको लगता है सब ठीक है. तो अगेन इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, अगर सब ठीक है तो भी टाइमली चेकिंग करना और कम्युनिकेट करना, चैनल देना फॉर ओपन कम्युनिकेशन कि अगर कुछ है तो आप आके मुझसे बात कर सकते हो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंस्टेड ऑफ सिंपली अज्यूमिंग कि ये इंसान तो सब अच्छे से कर रहे हैं, एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ ओके. लेट्स नॉट अज्यूम दैट.
3: आई वुड लाइक टू आस्क based on social media, where people have lot of मैं ये बोल सकती हूँ कि एग्जाम्पल बता सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है दूसरे स्टूडेंट्स को हरास कर रहा है. देर विल बी हरासमेंट, देर विल बी अ डिप्रेसिंग थॉट्स वेयर स्टूडेंट इज शेयरिंग दोज काइंड ऑफ अ थॉट्स. ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अ स्टूडेंट्स एनी वन. तो वो पैटर्न ऑब्जर्व करना इज दैट ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट.
2: वेरी इम्पोर्टेंट. सो यहाँ पे दो टॉपिक है, पहला हैरेसमेंट का है एंड दूसरा साइंस जो हमें सोशल मीडिया पोस्ट में दिखता है रिलेटेड टू सुसाइड. हैरेसमेंट इज अ वेरी इज अ थिंग दैट वी नीड टू रिपोर्ट. अगर हमें पता चल रहा है कि किसी बच्चे का पिक्चर किसी ने गलत तरीके से यूज़ किया हो या उन्हें कोई ऐसा कॉन्टेंट शेयर किया हो गया हो विच इज़ एक्सप्लिसिट या that made a person feel unsafe, that is very, then it is very important that we report that case and cyber security ka wahan pe help le. Second, about someone posting things which is very closely related to feeling of hopelessness ya koi aisi poetry likhna jahan pe thoda sa sadness jo hai wo chhalak raha hai ya sad status lagana, to kai baar log bolte ki ye to har mahine ka hai iska ye attention seeking activity hai ye karte hain. To we just want to say ki pick up that sign, even though if it's an attention seeking activity they are telling you that they need attention, it is very important that you do not ignore them. And what ho sakta hai ki unki artistic personality hi ho ki wo sad sab kuch post kare, phir bhi unse baat karo, kindly check up karo, shayad wo dismiss kare is cheez ko, theek hai shayad nahi hai wo cheez, but it is very important to ask because it's better to be safe than sorry, right? What if everything was right in front of them and हमने assume कर लिया कि it's just her personality or that's how the artist mind work. ये सब चीज़ें सोच के हमें रुकना नहीं है. अगर हमें लग भी रहा है कि वो attention seeking activity है then it's a clear big sign, give them attention, talk to them.
4: Ma'am, do you think like social media reach out to you first whatever like आपका जो भी thoughts है या फिर feelings आपके जो चल रहे हैं ना सिर्फ thoughts, सबसे पहले जो आपके पास रीच आउट करता है वो है सोशल मीडिया. बिकॉज जो भी आपका फीड रहता है एंड वो टोटली वर्क करता है आपके मेंटल स्टेट के ऊपर. Like if you are dreaming about something and the next moment you open the social media, you see them. Like,
2: okay, now about algorithm, आप मीडिया के स्टूडेंट हो, आप मुझसे ज़्यादा जानते हो यहाँ पे, तो फिर पहले करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, डू यू थिंक अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जहाँ पे फोन जो है पढ़ रहा है हमारे ड्रीम्स?
4: या आई डू थिंक
2: आई है.
3: आई थिंक मोर ओवर पढ़ने से ज्यादा वॉट एवर वी आर टॉकिंग और वॉट एवर वी आर सर्चिंग.
1: एग्जैक्टली,
2: यस, एब्सोल्युटली, दैट इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड दैट्स हाउ योर एल्गोरिदम पिक्स इट अप एंड देन कॉन्स्टेंटली आपको उसी चीज पे कॉन्टेंट बार बार दिखाया जाएगा. और जब कॉन्स्टेंटली उसी चीज पे वो एक्सपोजर आ रहा है तो अनकॉन्शियसली जब आप फिर आप सोओगे तो आपको वो ड्रीम में भी आएगा. इट इज़ ट्रू दैट कॉन्स्टेंटली आपका फोन भी आपको रिमाइंडर दे रहा है कितनी सारी चीज़ के. एंड सुसाइड प्रिवेंशन के अराउंड जितना कॉन्टेंट है ऑनलाइन उतना ही इट इज़ शॉकिंग एंड बट इट इज़ सो रियल कि सुसाइड के अराउंड भी ऐसा कंटेंट है जो प्रमोट कर रहा है सुसाइड. मतलब आई रिमेंबर सीइंग अ पोस्ट दैट टॉक्स अबाउट कि पीपल हैव सो मैनी गुड थिंग्स टू टॉक अबाउट यू बट फॉर दैट यू नीड टू एंड योर लाइफ.
4: Yeah, that's my point. Like, social media presents both positive and negative
2: perspective. Yeah, the extremes are there, yes. Right? So, like, अगर आप social media handle कर रहे हो या manage कर रहे हो, media को represent कर रहे हो, तो it is very important that you be sensitive and responsible while you are representing it. Now, media जैसे काफी help किया है media ने to गिव अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग ओपनली डिस्कस कर पा रहे हैं या एजुकेशनल कॉन्टेंट अराउंड मेंटल हेल्थ कंज्यूम कर पा रहे हैं. काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं जो कॉन्टेंट बना रहे हैं एक्टिवली. बट ऑन दी अदर हैंड उस सेम एल्गोरिदम में, उस सेम मीडिया में हमारे पास एक्सट्रीम कंटेंट है जहाँ पे जो, क्योंकि अब साइकोलॉजिकल वर्ड्स काफ़ी अवेलेबल है. अगेन आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू कि आपने नॉर्मली डिप्रेशन वर्ड यूज़ नहीं किया, आपने थोड़ा हेजिटेट किया वहाँ पर. We need such like a responsible citizen if you are on media, because if my students are like listening to me, they know ki maine kitni baar unko bola hai do not casually use these words. They're real mental health condition, do not use it in your bio that I'm a psychotic person. Yeah, like do not make fun of these stuff.
3: Yes.
2: Do not make it cool ki kids of autistic something something bio mein likha hoga. So ट्रीट मेंटल हेल्थ कंडीशन एज अ कंडीशन. हम किसी दूसरे फिजिकल कंडीशन को इस तरह से बायो में लिख के मजाक नहीं उड़ाते. तो दिस वर्ड्स का यूज करना इज नॉट हेल्पिंग अस इन एनी वे. इट इज सॉर्ट ऑफ डिसमिसिंग द एक्चुअल वैल्यू और सॉर्ट ऑफ मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द पर्सन इज एक्चुअली गोइंग थ्रू इट टॉक अबाउट इट ओपनली, बिकॉज उनको लग रहा है कि ये तो मजाक की तरह लिया जा रहा है. So there are two extremes that we need to keep in mind, and as a professional media representative we need to be mindful of how we are presenting the content.
4: Like ma'am, jab hum media ke around revolve kar hi rahe, so do you also think ke jo PR works hote hain, like Instagram pe comment sections hote hain, that also like affect the audience? The person, koi ek particular person ko wo cheez affect karti hai, like comments. कमेंट्स हो गए और रिस्पॉन्स हो गए.
2: राइट राइट. एक रील पे किसी ने अगर समझो खुद का ही कोई फोटो पोस्ट किया हो, लेकिन इट वॉज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर देम, बट देन समवन विल कॉल इट क्रिंज. कोई बोलेगा कि ये कैसा दिखावा कर रहे हैं या दिस इज सो क्रिंज. सो या पीपल आर आउट देयर टू मेक कमेंट्स जहाँ पे दे विल कॉन्स्टेंटली कंपेयर यू नो मैटर वॉट यू पोस्ट. दे विल क्रिटिसाइज यू. सो या दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स अ लॉट. उसका भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है.
3: रेफरिंग टू दिस, आई रिमेम्बर वन ऑफ द इंटरव्यू काइंड ऑफ रिचा चड्ढा था, जहाँ पे वो इंटरव्यू के टाइम पे एक क्वेश्चन आता है उसके पास कि डज इट इम्पैक्ट आपके कॉमेंट सेक्शन में जो ये नेगेटिव कॉमेंट्स आते हैं, डज दैट इम्पैक्ट्स यू. सो शी कॉमेंट ऑन दैट, दिल्ली में बैठ के चिंटू मेरे बारे में क्या बोलता है, व्हाई डज इट इंपैक्ट मी. सो दैट इज अ पॉजिटिवली शी हैज
2: टेकन. अगेन डिपेंड्स ऑन द पर्सन. रिचा चड्ढा मे बी हैड दैट रिसोर्सेज अराउंड देम और मीडिया पीपल अराउंड देम हु वर देयर टू एजुकेट देम कि ये पीआर टैक्टिक्स है या दे आर जस्ट रैंडम बुलीज. But not everyone is equipped with that kind of support around them. Maybe someone is sitting in some rural area, because now internet is everywhere, screen touch, like good quality mobile phone is everywhere. So they are simply presenting everything, and they do not know that these are simply chatbots who are doing things like only to bully someone. So they don't understand, and wahan pe unko again depends on person to person, and the kind of support that they have, their own coping mechanism, how they deal with situations like this.
1: With this related to one thing, I want to share one small experience. When we were doing, so Smita and me, we were in same degree college. We did our same bachelor's together in psychology, and we had this one professor. During our lectures, she was explaining something, and this particular one thing that she mentioned that time, which influenced me, and that I still use it. And I feel like if you are surrounded by such kind of people and you have such kind of awareness, it can help you to, you know, personally. And it was that she told me, never give a remote of your life to someone else to make you feel a certain way. And that I still use, that why will I let anyone else make me feel upset or happy or whatever I'm feeling right now. I have the control of myself right now. Whatever I'm feeling, whatever I'm saying, whatever I'm thinking, I have the control over my body, my thoughts and everything. I am not going to let anyone else make me or affect me about anything. Talking about this Instagram post, if someone is texting me, if I have that strong mindset, depends from person to person. If I have that strong mindset, it will not affect me. But if someone, if there's someone jinko ye choti choti baaton ka bahut farak padta hai, bahut bura lagta hai ki wo kya bolega, ye kya bolegi, usne mere bare mein kya socha, maine

0: पोस्ट डाला तो क्या सबको अच्छा लगेगा, और उस पर अगर कोई कमेंट करे ऐसे नेगेटिव तो उस इंसान को बहुत फर्क पड़ेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू हैव लाइक लिटिल दैट काइंड ऑफ सराउंडिंग, लिटिल अवेयरनेस, लिटिल स्ट्रॉन्ग माइंड सेट टू यू नो हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि हाँ ठीक है, अब कोई कुछ भी बोले मुझे इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ेगा, आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट इन लाइफ.
1: Sharing that answer, actually that sort of is that is making me feel so grateful that we came from a background jahan pe hamare aas pass log the to remind us ki see that help is available, yeah, you can take care of these things. So that's a privilege that still India mein bahut sare logon ke paas nahi hai, that the privilege of having people like our professors who are there to tell you that जैसे कहा कि काफ़ी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो स्कूल को भी काम करना है, टीचर्स को भी आई फील की ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि तुम कैसे हम कैसे एक माहौल क्रिएट कर पाए जहाँ पे बच्चा को ये ना फील हो क्लासरूम में आके कि मैं तो फेलियर ही हूँ, क्लास में जो रह के फेलियर फील हो रहा है, घर पर रह के फेलियर फील हो रहा है. तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम सिर्फ बच्चों के साथ, हम एक्टिवली सच में सब जगह ट्रेनिंग कर ही रहे हैं बच्चे एक्टिवली कंज्यूम कर ही रहे हैं कॉन्टेंट अराउंड मेंटल हेल्थ, बट वी नीड टू वर्क विद अडल्ट एज वेल, विद टीचर्स, विद पेरेंट्स, जहाँ पे वी ऑल्सो ट्रेन देम कि कैसे हम वो क्रिएट कर पाए सिचुएशन, बिकॉज उनकी ट्रेनिंग भी इसलिए ज़रूरी है कि उन्होंने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया है, अनफॉर्चुनेटली उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं थे. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी गो अहेड एंड गिव देम दैट. नाउ दिस विल अगेन मोटिवेट मी टू स्टार्ट पोस्टिंग ऑनलाइन. थोड़ा टाइम पहले मैं बात कर रही थी, हो नहीं पाता है मुझसे कैमरे के सामने पोस्ट नहीं कर पाती हूँ या टाइम नहीं मिलता है, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम मीडिया को जितना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मीडिया में राइट रिप्रेजेंटेशन करने का काम भी फिर कौन करेगा. इट इज़ अप टू पीपल लाइक अस हु हैव राइट नॉलेज.
0: वन लास्ट क्वेश्चन, सो बीइंग अ प्रोफेशनल, व्हाट इज समथिंग दैट यू वांट टू शेयर आउट देयर, एनीथिंग दैट can be personal or anything that everyone should know, that anything about suicide prevention.
2: And also adding to that question, I would add ki parents is pe kaise kaam kar sakte mainly because bachcha parents ke sath rehta hai, wo bond create karna bahut important hai. Teachers rehte hain kuch ghanton ke liye hote hain, I mean that is important, but at the same time I feel personal opinion that parents should actually be educated about that mental health.
1: Yes. पहले तो parents को accept करनी पड़ेगी चीज़ें कि real problems हैं, और काफ़ी problems ऐसी हैं जो बच्चा आपके साथ comfortable नहीं हो पा रहा है जो बोलने में, which is okay, we need to accept it कि आपके साथ comfortable नहीं है. As a parent ये आपकी responsibility है कि आप अपने बच्चे को ये बोलो कि no matter what, फिर अगर बच्चा, अगर आप ये कॉन्स्टेंटली रिमाइंडर दे रहे हो बच्चे को, तो हो सकता है कि वो पर्सनल ज़्यादा चीज़ें या डे टू डे चीज़ें आके ना भी शेयर करे, लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन होगा जहाँ पे बच्चा जेन्युइनली नीड्स हेल्प, उसको उस टाइम पे याद आएगा कि माई पेरेंट्स सेड टोल्ड मी दैट नो मैटर वॉट आई एम देयर विथ यू. सो दिस कॉन्स्टेंट रिमाइंडर शुड बी देयर, एंड सिर्फ बोलना इम्पॉर्टेंट नहीं है. अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आके आपके साथ कम्युनिकेट करे, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप भी कम्युनिकेट करो. मैंने पहले मॉडलिंग के बारे में बोला था कि बच्चे को एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा क्योंकि उसने कभी देखा नहीं है किसी बड़े को उसके बारे में बात करते हुए. तो आप भी आके अपने, अगर आप अपने दिन के बारे में शेयर करो, अगर ऐसा है कि कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ हुई है या कुछ अनकम्फर्टेबल चीज़ें हैं जो आप बोलने में थोड़ा आपको अनकम्फर्टेबल लग रहा है बच्चे के साथ, फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट पीरियड्स, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि आपको काफ़ी अनकम्फर्टेबल लग रहा है पीरियड्स के बारे में बात करके. एज अ फादर और अ डॉटर, या एज अ मदर और अ डॉटर फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ विस्परिंग मेक अ क्रिएट एन एनवायरमेंट जहाँ पे आप ओपनली उसके बारे में बात कर रहे हो. इससे क्या होगा, अगर आप डिस्कम्फर्ट के साथ भी बात करोगे ना, तो बच्चा विल पिक अप कि मेरे पेरेंट्स ने इतने डिस्कम्फर्ट के बाद भी, इतना हिचकिचाने के बाद भी ट्रस्ट किया और ये डिस्कशन उन्होंने किया मेरे साथ. तो मैं भी फिर एज अ चाइल्ड सीखूंगी कि मुझे भी कितना मुश्किल लग रहा है, बट आई कैन ट्रस्ट देम एंड आई कैन ट्राई. सो दैट इज़ वन. सेकेंड, फॉर लाइक टू आंसर योर क्वेश्चन कि सुसाइड प्रिवेंशन के लिए एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मुझे क्या बोलना है कि अगर मैं अभी बोलूँ कि यू आर नॉट अलोन, ये काफ़ी ज़्यादा आयरनी हो जाएगी बिकॉज यू जनरली आर फीलिंग अलोन. बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो पेन, वो आपको कमज़ोर नहीं बना रहा है. दैट डज नॉट मीन कि आप कमज़ोर व्यक्ति हो क्योंकि आप वो फील कर रहे हो. नो, द रियलिटी इज़ कि आपके आसपास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो वो पेन के साथ कोप करने के लिए शायद इनफ रिसोर्सेज आपको नहीं दिख रहा है. सिर्फ ये एक ही तरीका आपको दिख रहा है, दैट इज़ टू एंड योर लाइफ. बट ट्रस्ट मी, रिसोर्सेज है. वी डोंट नीड टू आंसर एवरीथिंग ऑल टुगेदर. हमको सब चीज़ का आज ही आंसर नहीं चाहिए. ये एक पॉडकास्ट इज़ नॉट वन स्टॉप सोल्यूशन कि इसके बाद से सब ठीक हो जाएगा. नहीं, वी नीड जस्ट वन मोर नाइट, वन मोर डे, जहाँ पे वी टेक स्मॉल स्टेप्स एंड दिस विल हेल्प अस लुक एट द रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल टू अस. सो फर्स्ट थिंग, इफ आई वुड वॉन्ट टू वॉन्ट माई ऑडियंस या एनी वन हु इज हैविंग सुसाइडल आइडिएशन, जस्ट टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम एंड टॉक टू समवन. टॉक टू एनी वन यू फील कम्फर्टेबल विद, योर क्लास टीचर, योर काउंसिलर, योर फ्रेंड या एनी ट्रस्टेड अडल्ट दैट यू हैव अराउंड यू. एंड इफ वो भी नहीं आपको लग रहा है कि कोई नहीं समझ पाएगा, देन आई ऑल्सो मैंशन फ्यू हेल्पलाइन नंबर्स दैट यू कैन रीच आउट, जैसे टेलीमानस या आई कॉल. तो आप इन पर भी रीच आउट कर सकते हो. अगर आप डिस्क्रिप्शन पर इफ यू कैन मैंशन दीज नंबर्स, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल.
2: सो दैट वॉज वेरी इंसाइटफुल कॉन्टेंट एंड आई थिंक इस कॉन्टेंट से लेकर काफ़ी बच्चों को हेल्प होगी, काफ़ी अडल्ट लोगों को भी हेल्प होगी एंड ऑल्सो आई वुड हाईलाइट कि पेरेंट्स को भी हेल्प होगी टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड अंडरस्टैंड द मेंटल हेल्थ. एंड बाकी जो भी सुन रहा है, मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको पता चल जाएगा इस एपिसोड से. सो यू आर लिसनिंग आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो. हमारे साथ थे मिस इशिता मिश्रा, हमारे साथ थे मिस स्मिता मिश्रा एंड आचल सिंह. साइनिंग ऑफ टुडे, थैंक यू सो मच.

आचार्य 90 FM की ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड ना भाई? दोस्तों का हालचाल पूछना मींस अपनापन जताना होता है, और अपनापन जताना मतलब स्वाद का जायका निभाने वाली बात है, है कि नहीं? तो चलिए, अपनापन जताने के लिए हमें एक बहाना मिल गया है। गणेश चतुर्थी के अगले दिन हम सेलिब्रेट करते हैं ऋषि पंचमी, और इस ऋषि पंचमी के दिन हमारे महाराष्ट्र में बनती है एक पौष्टिक भाजी। इसमें सीजनल वेजिटेबल्स और कंदमूलों का उपयोग किया जाता है, और खास बात ये है कि इसमें सिर्फ वही सब्जियों का इस्तेमाल होता है जिन्हें उगाने में बैल या किसी जानवर की मेहनत का प्रयोग नहीं हुआ है। ये पूरी तरह से सात्विक, स्वास्थ्यवर्धक और बिना कांदा लहसुन वाली एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन रेसिपी है। कद्दू मींस लाल भोपला, तुरई मींस दोड़का, खीरा, भिंडी, ताजा मक्का मींस भुट्टा और मूंगफली, ऐसी चीजों को बिना कांदा लहसुन का तड़का लगाकर इस ऋषि भाजी को बनाया जाता है। चलिए अब हम ऋषि भाजी की रेसिपी को सुनते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: कसा हुआ नारियल पाव कटोरी, हरी मिर्च दो, आलू मींस अरबी के पत्ते बारीक काटकर आधा कटोरी, मटर के दाने आधा कटोरी, कटी हुई वाल पापड़ी आधा कटोरी, कद्दू मींस लाल भोपड़ा आधा कटोरी, बॉइल्ड मकई के दाने आधा कटोरी, तोरई मींस दोड़का आधा कटोरी, खीरा मींस ककड़ी के टुकड़े पाव कटोरी, देसी घी एक बड़ा चम्मच, जीरा आधा चम्मच, इमली का पल्प दो बड़े चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग एक चम्मच नमक ले रही हूँ, पानी आवश्यकता के अनुसार, और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। सबसे पहले हम इस ऋषि जी भाजी का मसाला बना लेते हैं। इसके लिए हम मिक्सर के जार में ताजा नारियल और हरी मिर्ची को डालकर पीस लेंगे। इसे अच्छे से ब्लेंड करके हम भाजी के लिए मसाला बना लेंगे। फिर हम लेंगे मोटे बेस वाली एक कढ़ाई, उसमें हम गरम करेंगे देसी घी। घी गरम होने के बाद हम उसमें तड़का लगाएंगे। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं जीरा। जीरा को चटकने दीजिए। फिर हम उसमें डालेंगे आलूची पाने। इसे लगभग एक मिनट तक भून लेना है। उसके बाद हम डालेंगे वाल पापड़ी। इसे भी अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर हम उसमें ऐड करेंगे कद्दू, तोरी, मकई के दाने, खीरा और हरी मटर के दाने। इन्हें अच्छे से भूनकर लगभग दो मिनट तक चलाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और नारियल वाला मसाला, उसके साथ नमक और इमली का पल्प। इसे भी अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो इसे बनाते समय प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा पानी मींस लगभग आधा ग्लास पानी डालकर हमें इसे पका लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। इस रेसिपी में इस्तेमाल की गई सब्जियां मॉइस्चर वाली है, इसलिए इसे पकाते समय ज्यादा पानी मत डालिए, और इमली का पल्प यूज करने से आलूची पाने मींस अरबी के पत्ते आपके गले को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसे प्रेशर कुकर में सिर्फ एक सीटी आने तक पका लेना है। इतना सारा काम करके मैं तो थक गई भाई साहब, आई नीड अ ब्रेक।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले रुशीची भाजी को हमने पूरी तरह से पका लिया था। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, स्वीट कॉर्न के दाने की बजाय आप साबुत स्वीट कॉर्न को उबालकर 2-3 टुकड़ों में काटकर इस रुशी की भाजी में डाल सकते हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक सुंदर सी कटोरी। उस कटोरी में हम डालेंगे तैयार रुशीची भाजी। उसके ऊपर हम थोड़ा सा ताजा नारियल कद्दूकस करके डाल लेंगे। भाई वाह, ये तो एकदम टेम्पटिंग दिख रहा है। फिर उसके साथ हम परोसेंगे गर्मा गर्म रोटी या फूली हुई गर्मा गर्म रोटी। उसके बाद हम भगवान को इसका भोग लगाएंगे। इस रुशीची भाजी की सात्विकता को बढ़ाने के लिए हम इस पर तुलसी पत्र रख देंगे। ऐसा करने से भोग लगाने की मेथड बिल्कुल सही होगी। भगवान को भोग लगाने के बाद हम अपनों के साथ मिल बांट कर इस रुशीची भाजी का लुफ्त एकदम सात्विकता से उठाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, इसे खाकर आपको हमारी भारतीय संस्कृति पर गर्व महसूस होगा। इसलिए इस रुशीची भाजी को आप जरूर बनाइए। अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहने का ये तरीका आप अपना ही लीजिए और अपनों के साथ मिल बांटकर अपनी खुशी को दोगुना कीजिए। इस रुशीची भाजी के लिए पेश है एक कविता। कविता का नाम है सात्विक भाजी। आरती के समय हो गए धार्मिक, रुशीची भाजी एकदम सात्विक। कद्दू मटर और भिंडी संग आ गई मकई, इसमें कांदा लहसुन नहीं है कतई। अरबी के साथ डाली थोड़ी सी इमली, रुक गई बारिश और आ गई तितली। मिर्ची के साथ डाला नारियल सफेद, अपनापन जताने से दूर होंगे मतभेद। गणेश चतुर्थी के बाद सेलिब्रेट होगी ऋषि पंचमी, ऋषि भाजी का टेस्ट एकदम मखमली। यूं ही देते रहिए अपनों का साथ, आचार्य 90 FM पर अपनेपन की बात। भाई त्योहार का मतलब होता है खुशियां, और आस पड़ोस में खुशियां बांटने का ये मौका आचार्य 90 FM के हमारे प्यारे ऑडियंस के साथ हमने सेलिब्रेट किया। ऑडियंस जी, किया के नहीं जी, बिल्कुल किया। इस बात पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य नेडी एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। भाई ऋषि पंचमी स्पेशल ऋषि जी भाजी तो हमने बना ली, अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। श्री गणेश जी के आगमन के साथ महालक्ष्मी मीन्स गौरी जी का भी आगमन होता है। गणेश चतुर्थी के तीसरे या चौथे दिन गौरी जी आ जाती है। 3 दिनों तक महालक्ष्मी मीन्स गौरी पूजन बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। इस समय घर की बेटियों को बड़े प्यार से भोजन कराने की प्रथा है। पहले दिन गौरी आवाहन होता है, तब महाराष्ट्रियन लोग भाजी भाकरी मीन्स रोटी और सब्जी का भोग लगाते हैं। दूसरे दिन मुख्य पूजा होती है, तब महाराष्ट्रियन किचन में तरह तरह के पकवान बनने लगते हैं, जैसे कि पूरणपोड़ी, खीर, पंचामृत, 5 प्रकार की सब्जियां, कचुंबर के प्रकार, दाल चावल और दिवाली पर बनने वाली मिठाइयां वगैरह वगैरह। इस दिन का सेलिब्रेशन एकदम खास होता है, क्योंकि गौरी भोजन का शुभ अवसर इसी दिन होता है। फिर तीसरे दिन आरती करके गौरी विसर्जन किया जाता है, तब दही भात का भोग लगाया जाता है। आचार्य 90 एफएम के हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए हम बनाने जा रहे हैं सबकी फेवरेट पूरणपोड़ी। 11वीं शताब्दी के महाराष्ट्रीयन ग्रंथ चक्रदत्त में दाल और गुड़ के मीठे मिश्रण पूरण पाक का जिक्र किया है। पूरण मीन्स मीठी दाल और पोली मीन्स रोटी। मीठी दाल वाली रोटी इज इक्वल टू पूरण पोली। इसे गौरी पूजन, होली और गुड़ी पाड़वा जैसे शुभ अवसरों पर विशेष भोग के रूप में बनाया जाता है। वैसे हमारे गुजरात और दक्षिण भारत में भी पूरण पोली बनती है। चलिए अब हम पूरण पोली की रेसिपी को सुनते हैं। पूरण पोली बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। पूरण के लिए मींस स्टफिंग के लिए चना दाल 1 बड़ी कटोरी, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, पानी 3 कटोरी, तेल 1 चम्मच, ब्राउन गुड़ 1 कटोरी। ब्राउन गुड़ येल्लो के हिसाब से ज्यादा हेल्दी है। जायफल पाउडर 1/2 चम्मच, इलायची पाउडर 1/2 चम्मच, बादाम का पाउडर 2 चम्मच। अब आटा गूंथने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा 2 कटोरी, मैदा 4 चम्मच अप्रोक्सीमेटली, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं लगभग 1/2 चम्मच भर के नमक ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए पानी आटा गूंथने के लिए, देसी घी जरूरत के मुताबिक। चलिए अब हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। पूरण मीन्स स्टफिंग बनाने के लिए हम 1 बड़ी कटोरी में चना दाल को पानी डालकर भिगो कर रखेंगे। इसे लगभग 2-3 घंटे तक भिगोकर साइड में रखना है। 2-3 घंटे के बाद उसमें थोड़ा पानी, हल्दी, नमक और थोड़ा सा तेल डालकर प्रेशर कुकर में पकाना है। लगभग 5 सीटी होने तक हमें इसे पका लेना है। फिर हम गैस को बंद कर देंगे। अप्रोक्सीमेटली 1/2 घंटे के बाद हम दाल को बाहर निकालेंगे। उस पकी हुई चना दाल से हम सारा पानी हटा देंगे। इस हटाए हुए पानी को आप चाहे तो कटाची आमटी इस रेसिपी में यूज कर सकते हैं। फिर हम उस पकी हुई दाल में थोड़ा सा गुड़ मिलाएंगे। इस मिश्रण को मोटे बेस वाली 1 कढ़ाई में डालकर उसे धीमी आंच पर पका लेना है। थोड़ी देर में मींस लगभग 15 मिनट के बाद ये मिश्रण गाढ़ा हो जाएगा। इस दौरान आप इसे चलाते रहिए, फिर ये कढ़ाई को छोड़ने लगेगा। जब ये मिश्रण गोला टाइप बने तब हम गैस को बंद कर देंगे। हमें इसे ठंडा कर लेना है। तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
आप कहीं भी मत जाइए, मैं यूं गई और यूं आई।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब इस स्टफिंग को हम एक प्लेट में निकालेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे जायफल पाउडर, इलायची पाउडर और थोड़ी सी बादाम की पाउडर। यहां पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूं, साबुत इलायची को 2-4 चम्मच शक्कर के साथ मिक्सर में डालिए। ऐसा करने से इलायची पाउडर एकदम आसानी से बनती है। जायफल का पाउडर यूज करने के बदले हम कद्दूकस किया हुआ जायफल इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बादाम का पाउडर ऐड करने से पूरन पोली का स्वाद और ज्यादा निखर जाता है। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब इस स्टफिंग वाले मिश्रण को हम पूरन यंत्र में डालकर इसको स्मूथ बनाएंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं। इस दौरान हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर आप छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से उस स्टफिंग वाले मिश्रण से चना दाल का दाना निकल जाएगा। इस तरह से हमारा पूरन मींस स्टफिंग अब हो गया है तैयार। अब इस पूरन के हम नींबू के साइज के गोले बना देंगे। उसके बाद पूरन पोली का बाहरी हिस्सा मींस कोटिंग को बनाते हैं। एक मिक्सिंग बोल में हम डालेंगे गेहूं का आटा और मैदा। फिर उसमें हम ऐड करेंगे हल्दी और नमक। फिर आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसे गूथना है, मींस रेगुलर वाली रोटी जैसा आटा बनाना है। इसमें थोड़ा तेल मिलाकर हम फिर से गूथेंगे। उसके बाद लगभग आधे घंटे तक इसे ढककर रखना है। ऐसा करने से रोटी का टेक्सचर अच्छा बन जाता है। उसके बाद सेम आलू पराठा की मेथड से हम पूरन पोली को बनाएंगे, मतलब थोड़ा सा गूथा हुआ आटा लीजिए, उसे कटोरी का आकार दीजिए, उसके अंदर चना दाल वाली स्टफिंग को भर दीजिए, फिर उसे बड़ी सावधानी से हम बंद करेंगे, फिर चकला और बेलन की मदद से इसे एकदम प्यार से बेलना है। ऐसा करते समय हम थोड़ा आटा छिड़क देंगे। इस दौरान आप एक बात का खास ध्यान रखिए, पूरन पोली बेलते समय उसे आराम से ही बेलना है, उसके अंदर का स्टफिंग बाहर ना आए इसका ख्याल हमें रखना है। इस दौरान हम गैस पर तवा गरम करेंगे। अब तैयार पूरन पोली को एकदम संभाल कर उस तवे पर पलट देना है। यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बताती हूँ, गेहूं की रोटी या पूरन पोली बनाते समय

उसे फुलाने के लिए एक ट्रिक है। हम तवे पर जब रोटी सेके तब 3-4 सेकंड के बाद उसे पलट देना है। फिर गैस की आंच को एकदम धीमा कर दीजिए। उसके बाद 1.5-2 मिनट तक इसे सेक लेना है। चम्मच की मदद से रोटी को थोड़ा सा ऊपर उठाकर चेक कीजिए। जब तक उस रोटी के नीचे वाले हिस्से पर ब्लैक डॉट्स ना आए उसे पकने दीजिए। कुछ समय बाद रोटी पर डॉट्स दिखने लगेंगे। फिर एकदम संभाल कर उसे पलट दीजिए। अब गैस की फ्लेम को हाई मींस तेज कीजिए। ऐसा करने से रोटी एकदम पूरी तरह से फुल जाएगी। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। इस तरह से सारी पूरन पोली हम बना लेंगे। हमें इन्हें ठंडा करने के लिए फैला कर रखना है। अब आगे क्या करना है? तो भाई आगे हम लेंगे एक सुंदर सी प्लेट। उसमें एकदम संभाल कर हम रखेंगे सारी पूरन पोली। उसके ऊपर हम लगाएंगे शुद्ध देसी घी। इसको मराठी में कहते हैं तुपाची धार सोडने। उसके साथ हम रखेंगे दूध की सुंदर सी कटोरी। आप चाहे तो उसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड कर सकते हैं। फिर उन पूरन पोली की सात्विकता को बढ़ाने के लिए हम उस पर रखेंगे तुलसी पत्र। भाई वाह, इसकी सुंदरता तो देखते ही बनती है। उसके बाद एकदम प्रसन्न मन से हम भगवान को पूरन पोली का भोग लगाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ऐसा करने से आप एकदम अच्छा ही फील करेंगे। यकीन ना आए तो इसे एक बार बनाकर देखिए तो जनाब। फिर अपनों के साथ मिल बांटकर इस पूरन पोली का लुत्फ उठाइए। कैसे? तो भाई सबसे पहले आप जमीन पर बैठ जाइए। फिर अपने साफ और धुले हुए हाथों से पूरन पोली का एक निवाला लीजिए। उसे दूध की कटोरी में डुबाइए। फिर पूरन पोली का टेक्सचर फील कीजिए, उसका अरोमा भी महसूस कीजिए। इलायची और जायफल की खुशबू, आहा हा, साथ में मीठी महक और दूध की सफेद बूंदे, क्या कॉम्बिनेशन है। फिर एकदम आराम से उसे अपने मुंह में स्वाहा कीजिए। आहा, क्या बात, एकदम स्मूथ और सिल्की टेक्सचर वाली ये पूरन पोली तो एकदम कमाल टेस्ट करती है। और अपनों के साथ खाने से ये और टेस्टी लगती है। इस पूरन पोली की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है पारंपरिक पूरन पोली। मनपसंद त्योहार गणपति और गौरी, गौरी पूजन में बनाई हमने पूरन पोली। खुशियों से भर गया सारा संसार, पूरन पोली पर किए हमने कई संस्कार। भिगोना पकाना और पीसना ये है खाने के संस्कार। अपनापन दिखाकर दूर कीजिए अहंकार। पूरन पोली में डाली चना दाल और गुड़, इसका टेस्ट लागे एकदम ही सुमधुर। पूरन पोली के साथ आया देसी घी, साथ में थोड़ा दूध एंड से नो टू टी। पूरन पोली का रूप जैसे मीठा पराठा, इसे पसंद करे जाट सिख और मराठा। इलायची के साथ थोड़ा सा जायफल, हमारी भारतीय संस्कृति सबको करे सफल। गौरी गणपति का आ गया त्योहार, सात्विकता से भरा हमारा भारतीय आहार। चलिए अब हम सुनते हैं एक क्विक रीकैप। आज के एपिसोड में सबसे पहले हमने बनाई एक सात्विक भाजी।
किसी भी जानवर को जोते बिना उगने वाली सब्जियों को इस्तेमाल करके हमने रुशीची भाजी बनाई। कांदा लहसुन को यूज किए बगैर भी टेस्टी भाजी बन सकती है, इसे हमने बखूबी जाना। कद्दू, तोरी, मक्का, भिंडी, मटर, अरबी के पत्तों को नारियल और मिर्ची वाला मसाला हमने लगाया। फिर देसी घी में जीरे का तड़का लगाकर उसमें सारी सब्जियों को कम पानी में पकाया। अरबी के पत्तों के साथ हमने इमली का पल्प भी ऐड किया। इस प्रकार हमने एक सात्विक भाजी को बनाया। फिर हमने बनाई सबकी फेवरेट पूरन पोली। गेहूं और मैदा मिक्स करके आटा गूथा, फिर उसमें ब्राउन गुड़ और पकी हुई चना दाल का स्टफिंग भरकर उसे पराठे का रूप दिया। इसके साथ दूध की कटोरी और तुपाची धार मींस देसी घी हमने पेश किया। ऑडियंस जी, किया के नहीं जी, बिल्कुल किया। इस तरह से हमने गौरी गणपति को हमारे आचार्य 90 FM के स्टूडियो में भोग लगाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। हमारे आचार्य 90 FM चैनल को आप जरूर कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्ती की परिभाषा को मैं करूंगी डिस्क्राइब। चलिए, अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का। वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं, एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड ना? भाई सब अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे स्वाद का जायका इस शो के माध्यम से हम हमारे प्यारे ऑडियंस की सेहत का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करते हैं। अर्ज किया है, सावन की बारिश से बदल गया मौसम, मौसम का बदलाव लाया खुशियों वाला ब्लॉसम, खुशियों वाला ब्लॉसम कहे मुझसे आज का खाना होना चाहिए ऑसम। ऑसम खाना मतलब नहीं जंक फूड, जंक फूड मतलब बिग नो। खाना हो ऐसा जो बदल दे मूड, मूड को बदलने अपनाओ देसी खाना, और आचार्य 90 FM वाला कोई सुमधुर गाना। सुमधुर गाने की मनभावन ताल और आरजे भारतीय सीमा पूछ रही अपनों का हाल। स्वाद और सेहत वाला हमारा ये शो, खाना खाते समय रफ्तार को कीजिए स्लो। स्लो रफ्तार मतलब आराम से खाना, हमारी भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया ने है माना। दुनिया के मानने से हाई हुआ है जोश, सुनिए आचार्य 90 FM, मत बैठिए सिर्फ खामोश। खामोश बैठकर अगर हो गए हो बोर, तो बनाइए आज की रेसिपी और बोल में कीजिए पोर। ऑडियंस जी, हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है लाल चावल का सूप। भाई बारिश का मौसम और रिमझिम बरसता हुआ सावन, तब हर किसी का मन करता है कि कुछ गर्मा गर्म

0: टेस्टी खाना खाया जाए। ऐसे में बाहर से कुछ ऑर्डर करने से अच्छा है कि हम अपने घर पर ही कुछ हेल्दी खाना बना ले, है कि नहीं? वैसे भी बाहर वाला खाना खाकर अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने से अच्छा है कि हम कुछ नया और सात्विक खाना अपने घर पर ही बना ले। हमारी आज की रेसिपी कुछ इसी टाइप की है। व्रीही इस संस्कृत नाम वाले लाल रंग के चावलों को इस्तेमाल करके हम बनाएंगे एक टेस्टी सूप। इसमें आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स है। इसे पटनी के नाम से भी जाना जाता है। इन लाल चावलों से रोटी, पायसम, इडली और तरह तरह की रेसिपीज को बनाया जाता है। ये अनपॉलिश्ड चावल होते हैं। लाल चावल का टेस्ट थोड़ा अखरोट जैसा होता है। इन लाल चावलों से बना सूप पीने से पेट भरने वाली फीलिंग आ जाती है, इसलिए सुबह के नाश्ते के समय इसका सूप आप जरूर पीजिए और दिन की शुरुआत एक हेल्दी स्टाइल से कीजिए। चलिए अब हम इसकी रेसिपी को सुनते हैं। लाल चावल मींस व्रीही का सूप बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। लाल चावल लगभग एक मुट्ठी मींस अप्रोक्सीमेटली 4 चम्मच, प्याज एक मीडियम साइज अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम, गाजर एक छोटा सा ये भी 50 ग्राम, बीटरूट 50 ग्राम, पानी 4 बड़े कप, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग एक चुटकी नमक ले रही हूँ, देसी घी 1 चम्मच, बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 चम्मच और मेन इंग्रेडिएंट ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम चावलों को धो लेंगे, फिर हम बीटरूट का छिलका हटाकर उसके टुकड़े करेंगे। इसी तरह से हमें प्याज को भी काटना है। उसके बाद हम गाजर को भी धोकर उसके टुकड़े कर लेंगे। लाल चावल का सूप बनाने की तैयारी तो हमने कर ली, लेकिन इतना काम करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक।
1: Yes, sir. Is that clear? Yes, sir.

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमें लेना है मोटे बेस वाला एक बर्तन। उस बर्तन में हम डालेंगे गाजर, बीटरूट और प्याज। फिर हम उसमें डालेंगे लाल चावल और उसके साथ 4 बड़े कप भर के पानी। इन सारी चीजों को हमें अच्छे से पका लेना है। जब तक ये सारी चीजें उबलकर 1/4 ना बन जाए तब तक हम इसे उबालेंगे। हमें एक बड़ा कप भर जाए इतनी क्वांटिटी वाला इसका सूप बना लेना है। वैसे इसे लो फ्लेम पर पकाना ज्यादा अच्छा है, या फिर आप इसे सीधे प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। लो फ्लेम पर पकाने से इसकी छींटे थोड़ी कम उड़ेंगी। इसे पकाते समय आप चाहे तो नमक ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज सूप को सर्व करते समय आप नमक डालिए। जब तक ये सूप पककर 1/4 ना बन जाए तब तक इसे पकने दीजिए। फिर आप गैस को बंद कीजिए। उसके बाद हमें इसे छानना है, मींस सॉलिड और लिक्विड पार्ट को सेपरेट करना है। उसके बाद हम लेंगे एक सुंदर सा सर्विंग बोल। उसमें बड़े प्यार से हम डालेंगे लाल चावल का सूप। जरा सुनिए तो, थोड़ा रुकिए तो, भाई इतनी भी क्या बेकरारी। इसका डेकोरेशन वाला पार्ट अभी बाकी है। अब इस सूप में हम डालेंगे घी और इसकी सुंदरता को निखारने के लिए हम उस पर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। क्या बात, डार्क रेड कलर के सूप पर कोतमीर की हरियाली, आहा हा हा, जैसे उगते सूरज की लाली और साथ में प्रकृति की खुशहाली। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारा लाल चावल का सूप अब हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने के लिए हमारे प्यारे ऑडियंस जी हो गए हैं कितने बेकरार। तो भाई देर किस बात की, झटपट लाल चावल का ये हेल्दी सूप बनाइए और अपनों के साथ मिल बांट कर इस टेस्टी सूप का लुत्फ बड़े मजे से उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। आप चाहे तो इस लाल चावल वाले सूप के साथ रोस्टेड पापड़ भी परोस सकते हैं। इस लाल चावल वाले सूप में मौजूद गाजर और बीटरूट से हमारी हीमोग्लोबिन की लेवल बढ़ती है और प्याज से हमें मिलता है फॉस्फरस। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। इस लाल चावल की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है हेल्दी वाला सूप। बारिश के मौसम में खिल गई धूप, लाल चावल से बनाइए हेल्दी वाला सूप। हेल्दी वाला सूप पीकर खिल जाएगा रूप। आप बनाकर तो देखिए जनाब, सगळ्यांनाच आवडणार खूप। इन चावलों का रंग है लाल, इसे बनाकर सजाइए अपने भोजन का थाल। लाल चावल संग डाला बीटरूट, अच्छी सेहत बनाकर आप भी बनिए क्यूट। बीटरूट के साथ आ गया गाजर, हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला इस सूप में है सागर। इसे टेस्टी बनाने डाला है प्याज। अब बना ही दीजिए सूप, कल नहीं आज। गर्मा गर्म सूप में एक चम्मच घी, इसे पीते ही फ्रेशनेस ने दस्तक दी। चाहो तो डालो इसमें थोड़ा सॉल्ट, देसीपन अपनाना क्यों लगे फॉल्ट। व्रीही है इसका संस्कृत में नाम, सुनिए आचार्य 90 एफएम सुबह दोपहर और शाम। सूप का जायका बढ़ाने आप पापड़ को कीजिए रोस्ट, टेस्टी लगेगा खाना जब साथ होंगे।

है, लेकिन आचार्य 90FM के हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए इन स्वीट कॉर्न से हम बनाएंगे क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा, और इसे डीप फ्राई करने के बदले हम अप्पम पात्र में पकाने वाले हैं। तो जनाब तैयार हो जाइए हमारी अगली रेसिपी के लिए, जिसे खाकर हम और हमारे अपने एकदम खुश होने वाले हैं। क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बॉइल स्वीट कॉर्न के दाने 2 कटोरी, आइदर येलो और व्हाइट, प्याज 1, बेसन 1/2 कटोरी, चावल का आटा 2 बड़े चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, चाट मसाला 1/2 चम्मच, हींग 1 चुटकी, कोथमीर 4-5 चम्मच, करी पत्ता 5-6, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 1 छोटा चम्मच भर के नमक ले रही हूँ, तेल आवश्यकता के अनुसार। क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा बनाने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले प्याज को हम पतले टुकड़ों में काट लेंगे, फिर करी पत्ता को धोकर उसके भी बारीक टुकड़े कर लेंगे। आप चाहे तो करी पत्ता की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए, इससे इसका टेस्ट और ज्यादा निखर आएगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले हमने क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा बनाने की थोड़ी तैयारी कर ली थी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले हम लेंगे मिक्सर का एक जार, उसमें हम डालेंगे बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स के दाने। हमें उन स्वीट कॉर्न्स के दानों को बिना पानी डाले पीसना है। यहाँ पर आप एक बात का खास ध्यान रखिए, हमें स्वीट कॉर्न को दरदरा पीसना है, इसका फाइन पेस्ट हमें बिल्कुल नहीं बनाना है। फिर इस दरदरे से स्वीट कॉर्न में हम डालेंगे प्याज, उसके बाद हम डालेंगे बेसन और चावल का आटा। इसको एक चम्मच की मदद से हम मिक्स करेंगे। फिर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके साथ हम ऐड करेंगे हल्दी, मिर्ची पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा हींग। इसे भी हमें अच्छे से मिला लेना है। इन सब चीजों के साथ हम डालेंगे करी पत्ता और स्वाद के अनुसार नमक। इस मिश्रण में हमें पानी को नहीं मिलाना है। हमने स्वीट कॉर्न को पहले ही बॉईल किया था, मींस उसमें पानी ऑलरेडी है, और प्याज डालने से उस मिश्रण का मॉइस्चर थोड़ा और बढ़ जाएगा। फाइनली हम डालेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर। इन सब चीजों को हम बड़े प्यार से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिश्रण से पकोड़े बना लेते हैं। ऑडियंस जी, आपको याद तो होगा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम पकोड़ों को फ्राई नहीं करने वाले हैं। इन्हें पकाने के लिए हम यूज करेंगे अप्पम पात्र। सबसे पहले हम अप्पम पात्र को गैस पर गरम करेंगे। आप चाहे तो नॉनस्टिक अप्पम पात्र को यूज कर सकते हैं। फिर उसके हर खांचे में हम डालेंगे लगभग एक चम्मच तेल। इस तेल को हमें हर खांचे में अच्छे से फैलाना है। फिर चम्मच की मदद से हर खांचे में हम डालेंगे कॉर्न पकोड़ा वाला तैयार मिश्रण। इसे धीमी आंच पर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए हमें पका लेना है। 10-15 मिनट के बाद एक चम्मच की मदद से उन पकोड़ों को हम पलट देंगे। भाई वाह, एक चम्मच तेल में पकोड़े पक गए, क्या बात। उन पकोड़ों को पलटने के बाद हम आधा चम्मच तेल और ऐड करेंगे। वैसे ये स्टेप ऑप्शनल है। अगर खांचे में तेल ऑलरेडी दिख रहा है तो और तेल डालने की जरूरत नहीं है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमें दूसरे साइड से भी उन पकोड़ों को पकाना है, इसलिए इस प्रोसेस में लगभग 5 मिनट और लगेंगे। यहां पर मैं आपको टिप देना चाहती हूँ, ये पकोड़े बनाते समय हम गैस की फ्लेम को लो रख रहे हैं। हाई फ्लेम पर पकने से हमारे कॉर्न पकोड़े ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल। अब हमारे गर्मा गर्म और क्रिस्पी कॉर्न पकोड़े हो गए हैं तैयार और हमारे प्यारे ऑडियंस जी हो रहे हैं एकदम बेकरार। लेकिन लेकिन लेकिन थोड़ा रुकिए तो, जरा सुनिए तो भाई, इतनी भी क्या बेकरारी। इसका डेकोरेशन करना अभी बाकी है। अब हम लेंगे एक सुंदर सी प्लेट। उस प्लेट में हम रखेंगे केले का पत्ता। उस केले के पत्ते पर हम रखेंगे तैयार क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा। इसकी रंगत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम उस पर टमेटो सॉस को थोड़ी मात्रा में डालेंगे। एक चम्मच की मदद से आप टमेटो सॉस की पतली लाइनें बना सकते हैं। ऐसा करने से इसको प्रोफेशनल वाला लुक मिलेगा। आप चाहें तो इसके साथ ताजे पुदीना की चटनी को भी सर्व कर सकते हैं। भाई बारिश के मौसम में ऐसी चटपटी और होममेड चीजें बननी ही चाहिए, हफ्ते में कम से कम एक बार। इस तैयार क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा को आप अपने हाथों से एकदम नजाकत से उठाइए, अपनी उंगलियों से उसका टेक्सचर फील कीजिए, फिर उसके अरोमा को महसूस कीजिए। भाई वाह। उसके बाद एकदम तसल्ली से क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा को अपने मुंह में स्वाहा कीजिए।
आहा, क्या बात भाई, मजा आ गया। क्रंची और क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा मुंह में डालते ही हमारे सारे टेस्ट बर्ड्स एकदम खुश हो जाएंगे। फिर बिना इधर उधर ध्यान दिए एक और क्रिस्पी पकोड़ा अपने मुंह में फिर से डालना है। भाई छोड़ो ये डाइटिंग वगैरह, अपना देसी खाना तो सीजन स्पेशल होता है, थोड़ा खाने से आपकी डाइटिंग पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आपका मन एकदम खुश ही हो जाएगा। यकीन ना आए तो इसे एक बार बनाकर तो देखिए जनाब, इसे खाकर आप बारिश को एंजॉय करेंगे। इस क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा। आसमान में बजाया बिजली ने हॉर्न, पकोड़ा में डाला हमने स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न के संग डाला चने का आटा, पकोड़ा खाकर मत देखिए आप वजन काटा, बारिश के मौसम को किया सेलिब्रेट, अप्पम पात्र में पकोड़ा हुआ जनरेट, चावल के आटे से पकोड़ा हुआ क्रिस्पी, थोड़ा सा तेल खाना नहीं बिल्कुल भी रिस्की, डेकोरेशन के लिए डाला थोड़ा सॉस, अपनापन जताने में नहीं है लॉस। चलिए अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज सबसे पहले हमने बनाया एक हेल्दी सूप। लाल चावल, प्याज, गाजर, बीट रूट, इन चीजों को हमने उबाला, फिर उसे छानकर उसमें नमक और घी को भी डाला। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने उस पर कोथमीर डाली। इस प्रकार हमारा लाल चावल मींस व्रीही का सूप तैयार हो गया। फिर हमने बनाया बारिश सीजन स्पेशल एक पकौड़ा। बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स, बेसन, चावल का आटा और कुछ मसाले डालकर हमने पकौड़ा का बैटर बनाया। फिर अपम पात्र में एकदम कम तेल में हमने लो फ्लेम पर इसे पकाया। इस प्रकार बारिश के मौसम को हमने हमारे आचार्य 90FM के प्यारे ऑडियंस के साथ एकदम टेस्टी और हेल्दी स्टाइल से सेलिब्रेट किया। ऑडियंस जी, किया के नहीं जी, बिल्कुल किया। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसे लगा ये हमें जरूर बताइए, और अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो वो भी हमें बताइए। लेकिन उसके पहले आपके फेवरेट आचार्य 90FM चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए मायने रखता है। चलिए अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।